मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के अषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपकी मित्रेला आपके साथ हूँ। सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ESI अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस

भी सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस देश गान से।

0: जगजीत सिंह की गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। इसमें जानिए श्री सुभाष चंद्र अरोरा के विचार।
1: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पंच तत्व ढला जगत, अगे, अजे, अविनाशी। मैं जीवन प्रकाश, सृष्टि का छठवां तंत्र, सर्जित करता कामवेग, स्पर्श, गंध, क्रोध, मोह, जीवन बीज मूल मंत्र, उर्जित करता एहसास, उल्लास, आभासित होता, अंकुरित होता, खाता, बढ़ता, चढ़ता, रोता, हँसता, बहता जाता दूर दूर, लक्ष्य मात्र एक, खुद को पा जाऊं या फिर मर खप जाऊं, हो पुनः अंकुरित, सिलसिला यही दोहराऊं। प्रकृति के पांच तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश पर्यावरण के अभिन्न अंग है। हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। हमारे चारों ओर जो जीव, अजीव, घटक, परिस्थितियां अथवा शक्तियां विद्यमान हैं, हमारे व समूचे जीव जगत को प्रभावित करती हैं। पंच तत्वों का प्रदूषित होना पर्यावरणीय दृष्टि से विनाशकारी और प्राणी मात्र को घातक प्रभाव देने वाला है। आज प्रकृति के समस्त संसाधन प्रदूषण की चपेट में आते चले जा रहे हैं। हवा, जल और मिट्टी, जो हमारे जीवन के आधार हैं, अपना मौलिक स्वरूप एवं गुण खोते जा रहे हैं। पर्यावरण की छतरी अर्थात ओजोन परत, जो हमें सौर मंडल से आने वाली घातक किरणों से बचाती है, उसमें छेद हो गया है। वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दिनों दिन हमारी घटती शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति, घातक रोगों का प्रादुर्भाव, कोविड-19 जैसे बदलते वेरिएंट वाले विषाणु विस्तार भस्मासुर के आने की घंटी बजा रहे हैं। वैसे भी विकसित राष्ट्रों की प्रभुता की लालसा ने, अंधाधुन परमाणु हथियार बनाने की होड़ ने मनुष्य को अंधा, बहरा और क्रूर बना दिया है। समस्त प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ने प्राकृतिक संपदा का भरपूर दोहन किया है। बढ़ती जनसंख्या, उपभोक्तावाद, शहरीकरण, जंगलों की अंधाधुंध कटाई आदि ने धीरे धीरे हमसे कुदरत के नैसर्गिक सुखों को दूर कर दिया है। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यही ऑक्सीजन वायुमंडल में मिलकर प्राणी मात्र के लिए प्राणवायु का काम करती है। मनुष्य व जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधों में भोजन बनाने के काम आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पर्यावरण में मौजूद सभी घटक सिम्बायोटिक विधि से आपस में एक दूसरे से संबद्ध हैं और पर्यावरणीय संतुलन कायम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पेड़ों के कटने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर बढ़ती मात्रा वातावरण के तापकरण में वृद्धि की कारक है। मौसम चक्र में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से समुद्री किनारों की बस्तियों को जलमग्न होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आज जरूरी हो गया है अपने वनों की रक्षा करना और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, उचित स्थान पर वर्षा ऋतु में किया जाने वाला वृक्षारोपण सदैव कामयाब होता है तथा समाज के लिए सुखदायक भी। हमारे ग्रंथों में वृक्षारोपण की महिमा बखान करते हुए कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। वृक्ष रोपणकर्ता को महती कीर्ति और शुभ परिणाम मिलते हैं, अतः वृक्ष लगाना अत्यंत शुभदायक है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। पर्यावरण विषय पर आपने जानी श्री सुभाष चंद्र अरोरा के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय, इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय के रूप में करें। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। बकरी के दूध में पौष्टिक गुण होने के साथ साथ लौह तत्व की अधिकता, प्रोटीन और वसा की मात्रा लगभग माँ के दूध के बराबर पाई जाती है। बकरी के दूध में वसा के कण छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं, जिससे यह दूध गाय भैंस की तुलना में शीघ्र पाचनशील होता है। जो व्यक्ति दमा और खांसी रोग से पीड़ित होते हैं, उनके लिए बकरी का दूध दवा का कार्य करता है। बकरी गाय और भैंस की अपेक्षा आकार में छोटी होती हैं, इसलिए आवास व्यवस्था बनाने में अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और कम पूंजी में व्यवसाय आरंभ किया जा सकता है। बकरियों की यदि सही तरह देखभाल की जाए और उन्हें संतुलित आहार दिया जाए तो बकरियां शीघ्र ही आय का स्रोत बन जाती हैं। बकरियों की प्रमुख रूप से दो प्रजातियां पाई जाती हैं, जमुनापारी और बरबरी। जमुनापारी बकरियां अक्सर सफ़ेद रंग के साथ साथ काले और कत्थई धब्बों के रूप में पाई जाती हैं। इनका आकार बड़ा और कान बड़े लटके हुए होते हैं। पिछले पुट्ठों पर घने और लंबे बाल पाए जाते हैं। ये बकरियां दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त होती हैं। इनका औसत दूध उत्पादन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है। बरबरी बकरियां प्रमुख रूप से दूध उत्पादन के लिए ही पाली जाती हैं। बकरी खरीदते समय बकरी की उम्र लगभग 3 वर्ष हो, माथा लंबा मध्यम चौड़ाई वाला हो और माथे पर घने बाल न हो, आंखें बड़ी और चमकीली हो। जिस उद्देश्य से बकरी पालन करना चाहते हैं, सुविधा अनुसार नस्लों का चयन करना चाहिए और स्थिति के अनुसार जितनी बकरियों को सफलतापूर्वक पालन पोषण कर सकें, शुरुआत कम बकरियों से करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। बकरियों के लिए आवास व्यवस्था इस प्रकार बनानी चाहिए कि बकरियों को सर्दी, गर्मी, वर्षा और जंगली जानवरों से बचाव किया जा सके। साथ ही आवास ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पानी न ठहरता हो।

0: क्योंकि बकरियां कीचड़ और गीलापन बिल्कुल पसंद नहीं करती। आवास ऐसी जगह पर बनाएं जहां पर स्वस्थ हवा और प्रकाश का आवागमन होता रहे, बकरियों को स्थान का अभाव महसूस न हो। जहां पर बकरियों को रखते हैं वहां पर लगातार साफ सफाई करते रहें, नियमित अंतराल पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें जिससे किलनियां, मक्खी, मच्छर पैदा न होने पाएं। अधिक ठंडी और अधिक गर्मी से बकरियों का बचाव करें। संतुलित और सुपाच्य आहार दें, स्वच्छ और ताज़ा पानी पिलाएं। अंतः परजीवियों से बचाव के लिए समय समय पर दवाएं पिलाते रहना चाहिए। बकरियों में रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। यदि बकरियों की चाल में परिवर्तन दिखाई दे, भूख कम हो जाए, नथुने और थूथन सूखने लगें, नाड़ी की धड़कन कम या अधिक हो जाए, श्वसन गति में अंतर आ जाए, गोबर और मूत्र में परिवर्तन दिखाई दे तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और रोग की रोकथाम का प्रबंध करना चाहिए। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कहीं भी और किसी भी मौसम में आसानी पूर्वक किया जा सकता है। अगर बकरियों की सही तरह देखभाल की जाए तो उन्हें जीवित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आर्थिक आय का एक स्रोत स्थापित कर सकते हैं।
1: बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय, इस संबंध में जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह और कार्यक्रम था कृषि चर्चा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
1: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं। प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
2: पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की,
3: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
4: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
3: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
4: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
3: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
4: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।

0: करें?
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
0: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
0: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय

0: नी बचाएं भविष्य सजाएं।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार होंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन संभाषणम् अकरोत्। संभाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिमेशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमंत्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये संजातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरंतर नीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समाह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठु नीत्या एव भवितुम् अर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एकदिनांकात् कृत्स्नेहि ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25 दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तंत्रस्य क्रियान्वयनार्थं अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92,695,000,000,000 रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25,000,000 दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायी सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह 16 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनं उभयोर देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुम् एकं प्रकृष्टं अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्यां अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य

0: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तंत्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येते सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अंतर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तंत्रस्य अंतर्गतम् उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे वसुंधरा कार्यक्रम में वार्ता, ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या। वार्ताकार होंगे डॉक्टर भावना सिकरवार। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए प्रातः 7:30 पर। प्रातः 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं राजेंद्र पारेख की गाई कुछ गजलें। प्रातः 9:00 का समय होता है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं हेमंग कोल्हटकर का ख्याल गायन, राग होगा मियां की तोड़ी और समय होगा प्रातः 9:30 पर। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का आनंद ले सकते हैं 10:05 पर। कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप फरमाइश। प्रातः 10:58 तक 58 से प्रसारण होगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 11:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 12:00। महिलाओं के लिए कार्यक्रम 1:00 आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। लोक संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा और समय होगा 12:30 पर। 12:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 2:00 और चित्रपट संगीत सुना जा सकता है 2:02 पर।

ये तो थे हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब जान ली हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को। शाम 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और रात्रि 9:15 पर।

एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकता है शाम 6 बजे। वन महोत्सव सप्ताह और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ये विषय होंगे चर्चा के। इसके अलावा भेंटवार्ता सुनी जा सकती है, अवर्षा की स्थिति में फसलों का चयन, इस संबंध में जानकारी देंगे डॉक्टर आर एस शाक्यवर। ये सभी कुछ हम समेट लाएंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल में। समय वही होगा यानी शाम 7:20 पर। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया, कहा केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। वीबीजी रामजी अधिनियम आज से होगा लागू, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति भयावह है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने स्थिति का जायजा लिया है और इसके लिए चर्चा की है। संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है।
1: यहाँ भारी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश में जो संकट पैदा हुआ है, स्थिति भयावह है, संकट बड़ा है और चुनौती भी सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी तत्परता पूर्वक कदम उठाए गए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन, मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। प्रधानमंत्री को यहां की स्थिति की रिपोर्ट दी जाएगी और हर संभव सहयोग भारत सरकार करेगी। श्री चौहान ने आज भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लेने का आश्वासन दिया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश भर में इस नए कानून को लागू करने के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर नए ढांचे में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज

0: सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। महोत्सव में कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण, 494 करोड़ से अधिक लागत के 629 विकास कार्यों को लोकार्पण एवं भूमि पूजन और हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव राज्य के कोदो कुटकी उत्पादक 3,941 किसानों के बैंक खातों में 2,82,99,300 रुपये की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। ये राशि किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रदान की जा रही है, जिससे श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद भारती पारदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि जल से ही जीवन है और जीवन के लिए पानी की बचत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीते 3 वर्षों से यह अभियान वृहद रूप से जन सहयोग से चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनरुद्धार किया है। कल राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल अलनीनो के प्रभाव से कम बारिश का अनुमान है, इसलिए प्रदेश में अमृत सरोवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदी संरक्षण जैसे जल स्रोतों के संरक्षण कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि
2: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सब का पुनरुद्धार किया।
0: रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद जबरदस्त मजबूती दिखाई है। बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत विकास दर, कम महंगाई, वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट और पर्याप्त बफर ने माइक्रो फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं और बाहरी झटकों से निपटने की ज्यादा क्षमता प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जून तक प्रदेश भर में 5,48,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 4,68,000 से अधिक विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 2,93,257 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इनके बैंक खातों में 1,010,25,00,000 रुपये की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ICC महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में उसने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कल मानसून जबलपुर, भोपाल, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर पात्र लोगों को तुरंत लाभ पहुंचाया जाए।

मानसून के चलते नर्मदापुरम का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और शिवपुरी का माधव टाइगर रिजर्व आज से 30 सितंबर तक अगले 3 महीनों के लिए पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सतपुड़ा के मढ़ई और चूरना कोर क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। झाबुआ जिले में साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के 7वें दिन साइबर सुरक्षा रैली, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंदौर के 100 सरकारी स्कूलों में ONGC CSR फंड और सांसद सेवा संकल्प के सहयोग से करीब 70 लाख रुपए की लागत से RO सिस्टम और वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में 29 स्कूलों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और बड़वानी जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी आज से शुरू हो गई है। ये खरीदी आगामी 10 अगस्त तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल में भारी बारिश का जायजा लिया। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटेंगे। VBG रामजी अधिनियम आज से होगा लागू। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने बालाघाट और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडिया वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वसुंधरा। इस कार्यक्रम में सुनिए वार्ता, ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या। इस संबंध में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर भावना सिकरवार।
1: ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल के समग्र तापमान में क्रमिक वृद्धि से है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे बर्फ के ग्लेशियरों को तेजी से पिघला रही है। यह धरती के साथ साथ इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना काफी चुनौतीपूर्ण है, परंतु असंभव नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग होने के कुछ कारण हैं जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक कारण हैं। पहला कारण है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली राख और धुआं वायुमंडल में चले जाते हैं और जलवायु को प्रदूषित करते हैं। दूसरा कारण है जलवाष्प। जलवाष्प एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है। इसी क्रम में तीसरा कारण है पिघलता हुआ परमोफ्रॉस्ट। परमोफ्रॉस्ट जमी हुई मिट्टी है जिसमें कई वर्षों से पर्यावरणीय गैसें फंसी हुई हैं और यह पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद हैं। जैसे ही परमोफ्रॉस्ट पिघलता है, यह गैसों को वापस वायुमंडल में छोड़ देता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। इसका अगला कारण है जंगल की आग। जंगल की आग जो कि बड़ी मात्रा में कार्बन युक्त धुएं को निकालती है और ये गैसें वायुमंडल में सीधे चली जाती हैं और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। अब हम ग्लोबल वार्मिंग के कुछ मानव निर्मित कारणों पर भी चर्चा करेंगे। इनमें से प्रमुख कारण है वनों की कटाई। पौधे ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। कई घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों को खत्म किया जा रहा है। इससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हुआ है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा कारण है वाहनों का अत्यधिक उपयोग, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषाक्त पदार्थ जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसका तीसरा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर के अत्यधिक उपयोग से मनुष्य के पर्यावरण में CFC बहुत अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में छोड़ी जा रही है, जो वायुमंडलीय ओजोन परत को प्रभावित करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। इसी श्रेणी में अगला मानव निर्मित कारण है औद्योगिक विकास। कारखानों से निकलने वाला हानिकारक उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है। विभिन्न कृषि गतिविधियों जैसे रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का उपयोग भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का उत्पादन बढ़ा रहा है। इनसे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक और महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि अधिक लोग सांस ले रहे हैं। इससे वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली प्राथमिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें भी हैं। ये पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और इसे पृथ्वी की सतह पर वापस भेज देती हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं और यह पृथ्वी को गर्म रखती हैं। कुछ प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं ओजोन। यही ग्रीन हाउस गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म देती हैं। ग्रीन हाउस एक कांच से बना हुआ घर है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर पौधों को और हवाओं को गर्म रखती हैं। अंदर फंसी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और ग्रीन हाउस को गर्म कर देती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल की भी यही स्थिति है। दिन के समय जब सूर्य पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है और रात में जब पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो यह गर्मी वापस वायुमंडल में विकीर्ण हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाती है, जिससे पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का अस्तित्व बना रहता है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़े हुए स्तर के कारण ही पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ गया है, इसके काफी गंभीर प्रभाव भी हो रहे हैं। वैज्ञानिक प्रमाणों में निर्णायक रूप से यह साबित कर दिया है कि पृथ्वी का तापमान 0.85 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। इसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग रूप से पड़ रहा है। प्रभावों में समुद्र के स्तर में वृद्धि, पीछे हटते ग्लेशियर, ध्रुवों में समुद्री बर्फ का नुकसान, वैश्विक तापमान में वृद्धि और वर्षा के स्तर में बदलाव और रेगिस्तानों का विस्तार आदि शामिल है। इससे मनुष्यों के लिए बढ़ते समुद्र के कारण निचले इलाके का जलमग्न होना जैसे महत्वपूर्ण खतरे पैदा हो गए हैं। पृथ्वी पर नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया है कि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों के सापेक्ष अधिकतम 2.0 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाना चाहिए। बढ़ते तापमान में ग्रीन हाउस प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनने वाले गैसीय उत्सर्जन को सीमित करने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। इसमें पहला प्रभाव है तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है। सन 1880 के बाद में पृथ्वी का तापमान लगभग 1 डिग्री बढ़ गया है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने में वृद्धि हुई है, जिससे समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हुई है। इसका तटीय क्षेत्रों पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा प्रभाव है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा। ग्लोबल वार्मिंग में मूंगा चट्टानों को प्रभावित किया है, जिससे पौधों और जानवरों के आवास की हानि हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु की स्थिति में भी परिवर्तन आया है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। यह जलवायु असंतुलन भी ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। बीमारियों का फैलना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण चारों तरफ गर्मी और आर्द्रता के फैलने के कारण मच्छरों की आबादी भी बढ़ गई है, जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं। उच्च मृत्यु दर। बाढ़, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि के कारण भी औसत मृत्यु दर की आमतौर पर वृद्धि हो रही है। जलवायु में

0: वैश्विक बदलाव के कारण कई पौधों और जानवरों के आवास नष्ट हो रहे हैं। इस मामले में जानवरों को अपने प्राकृतिक आवास से पलायन करना पड़ता है और उनमें से कुछ विलुप्त भी हो जाते हैं। यह जैव विविधता पर ग्लोबल वार्मिंग का एक और बड़ा प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल भी कम करना होगा। ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे CFC गैसें कम निकलती हैं। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों में से निकलने वाला धुआं बहुत हानिकारक है और इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्मी बढ़ाती है। इन इकाइयों को भी प्रदूषण रोकने के लिए उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाला धुआं कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे और फिर से उपयोग में लाने वाले कचरे को अलग करने की कोशिश करनी होगी। प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई भी रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। इन सभी बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें बिजली के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। कोयला, तेल के जलने के स्तर को कम करना चाहिए। परिवहन और इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग भी कम करना चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को काफ़ी हद तक कम करने में आसानी होगी। इस वैश्विक समस्या के निराकरण के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा।
1: ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वार्ताकार थी डॉक्टर भावना सिकरवार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था और इस गीत को संगीत दिया था शंकर जय किशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म जब जब फूल खिले से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और नंदा ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सो योर प्लेस और माइन,
4: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
3: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: जीने की राह, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है झूठा सच।

झुक गया आसमान। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: जल्द ही फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में समाचार होंगे जिन्हें आपने दिल्ली
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान

0: राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ESI अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध हुईएगा।
3: सभी मदरसों को यूडायस यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन

0: सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। श्रोताओं, जब भी हम बात करते हैं या किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले इंसान की जो सूरत हमें दिखाई देती है और वो सूरत जो होती है वो उसमें एक रूप होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए राजेंद्र पारेख की गाई कुछ गजलें।

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी आप राजेंद्र पारिक की गाई कुछ गजलें सुन रहे हैं।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में अभी आप राजेंद्र पारी की गाई कुछ गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। भारत की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMJI अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। महोत्सव में कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण भी किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जून तक प्रदेश भर में 5,48,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में प्रवेश में 42.03% की रिकॉर्ड वृद्धि है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, मैं हूँ आपकी रेडियो मित्रिला आपके साथ। श्रोता मित्रों, करीबन डेढ़ महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद में आज स्कूल खुल गए हैं। सुबह सुबह से ही शहर के हजारों घरों में एक बार फिर से वही पुरानी खास हलचल होने लगी है ना। कहीं नई यूनिफॉर्म की सिलवटें ठीक की जा रही हैं और पानी की बोतलें रखी जा रही हैं, कहीं टिफ़िन बैग में सहेज कर रखे जा रहे हैं। छोटे छोटे कदम फिर स्कूल की ओर बढ़े और घर के दरवाज़ों तक उनके पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आए। और इसी तरह दूसरी ओर स्कूलों ने भी अपने आंगन को बच्चों की किलकारियों से भरने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रवेश द्वार पर तिलक, फूल, मुस्कान के साथ बच्चों का स्वागत। कक्षाओं में परिचय, खेल, गीत और मनोरंजक गतिविधियों के जरिए पहले दिन को यादगार बनाया जाएगा। छुट्टियों के बाद लौटती ये सुबह सिर्फ एक नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत ही नहीं होगी, बल्कि उम्मीदों, जिम्मेदारियों और भावनाओं के नए सफर की ओर पहला कदम भी होगा। लंबे अवकाश के बाद स्कूल परिसरों में फिर से बच्चों की चहल पहल, घंटियों की आवाज़ें, दोस्तों की खिलखिलाहटों से गुलजार उठेंगे। तो ये दिन तो आप सबके लिए भी खास है ना। और इसके अलावा एक और बात, आज यानी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को वनों के संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और अधिक से अधिक पौधे लगाने की भावना को प्रोत्साहित करना, यानी लोगों को इस बारे में जागरूक करना। वन महोत्सव की शुरुआत भारत में वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यानी KM मुंशी ने शुरू किया था। ये मुख्य रूप से मानसून के आगमन के समय यानी जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है, क्योंकि इस समय पर लगाए गए पौधों को ये पौधे आसानी से लग जाते हैं और विकसित हो जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है हरियाली को बढ़ाना यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। जन जागरूकता के लिए वनों की कटाई और पर्यावरण असंतुलन से होने वाले नुकसान के बारे में भी लोगों को सजग कराना। एक पौधा माँ के नाम और सहकार से समृद्धि जैसे अभियानों के जरिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना। अपने आसपास स्थानीय पार्कों में जहाँ भी जगह मिले आप पौधे लगा सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े एक पौधे को काटने की या एक पेड़ को काटने की तो उसके बदले में कम से कम 5 पौधे ज़रूर लगाएं। आप सभी जानते हैं कि वन यानी जंगलों से तापमान भी नियंत्रित रहता है, इससे वर्षा की मात्रा और निरंतरता को वन बनाए रखते हैं। हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी ये हमें देते हैं। भूमि का क्षरण रोकने के साथ ही उसे उर्वरक भी बनाते हैं। बाढ़ और सूखे की विभीषिका से ये हमें बचाते हैं। इसी तरह पर्यावरण को ये संतुलित रखते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये पता चला है कि वन और वृक्ष विश्व के सबसे प्रभावकारी प्रदूषण नियंत्रक होते हैं। वन अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं के भी आश्रयदाता होते हैं। बहरहाल मैं तो फिर एक बार आपसे यही कहूँगी कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का रोपण करें और जो भी फल खाएं हो सके तो उनकी गुठलियों को सुखाकर इस मौसम में एक पौधा ज़रूर रोपें। बहरहाल खबरें तो और भी हैं, बातें तो और भी हैं, पर क्यों ना गुनगुना लिया जाए ये गीत।

0: आज भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे वो। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रणी पंक्ति के नेता थे, समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। हिंदी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1950 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें भारत की राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया। वे जन सामान्य में राजर्षि यानी ऐसा प्रशासक जो ऋषि के समान सत्कार्य में लगा हुआ हो के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका पहला लक्ष्य था। वे हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का टंडन जी का मुख्य सपना था। टंडन जी का राजनीति में प्रवेश हिंदी प्रेम के कारण हुआ। 17 फरवरी 1951 को मुजफ्फरनगर सुदृढ़ संघ के 17वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में इस बात को स्वीकारा था। 1961 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली। 1 जुलाई 1962 को उन्होंने अंतिम सांस ली।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोता मित्रों, आज का दिन यानी 1 जुलाई का दिन भारत के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी और राष्ट्रीय अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत की महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय यानी BC राय को समर्पित है। उनके जन्म और पुण्यतिथि दोनों ही 1 जुलाई यानी आज के दिन होते हैं। ये दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स के अमूल्य योगदान, कड़ी मेहनत और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा ये दिन महान चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात राजनेता डॉक्टर BC राय की जयंती और पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। चिकित्सा सेवा, शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान और सम्मान में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की पढ़ाई की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद कम समय में MRCP और FRCS जैसी प्रतिष्ठित चिकित्सा उपाधियां प्राप्त की। भारत लौटने के बाद उन्होंने चिकित्सक सेवा में केवल पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा के माध्यम से इसे अपनाया। वे एक कुशल चिकित्सक होने के साथ साथ उत्कृष्ट शिक्षक भी थे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से कोलकाता में कई मुख्य चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों की स्थापना और विकास हुआ। वे मानते थे कि हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी डॉक्टर राय सक्रिय रहे और महात्मा गांधी सहित कई राष्ट्रीय नेताओं के निजी चिकित्सक रहे। स्वतंत्रता के बाद वे वर्ष 1948 से 1962 तक बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर नियोजन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कई दूरदर्शी निर्णय लिए। देश के प्रति उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार

वर्ष 1961 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। चिकित्सा जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर राय राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, जिसे चिकित्सा क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस केवल डॉक्टर राय को श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं है, बल्कि उन सभी चिकित्सकों के प्रति भी सम्मान व्यक्त करने का दिन है, जो कि दिन रात मरीजों की सेवा में समर्पित रहते हैं। विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर्स की भूमिका ने यह साबित कर दिया कि वे केवल इलाज करने वाले पेशेवर नहीं हैं, बल्कि समाज के सच्चे रक्षक भी हैं। बहरहाल, इस खास जानकारी के बाद क्यों ना गुनगुना लिया जाए एक गीत।

खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोता मित्रों, आज 1 जुलाई है और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी है। कहते हैं ना कि आर्थिक क्षेत्रों की रीढ़ कहे जाने वाले जो प्रोफेशंस हैं ना, उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक मुख्य प्रोफेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस का समृद्ध इतिहास सन 1949 में शुरू हुआ था, जब संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की औपचारिक स्थापना हुई थी। एक वैधानिक निकाय के रूप में ICAI भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे के विनियमन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ICAI की यात्रा भारत में चार्टर्ड अकाउंटिंग के पेशे को विनियमित करने और ये सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ शुरू हुई कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बराबर हों। पिछले कई वर्षों में ICAI ने भारत के लेखांकन और वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ICAI 35 लाख से अधिक सदस्यों के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखांकन निकाय है। CA दिवस ICAI के समृद्ध इतिहास, लेखांकन पेशे में उसके योगदान और उत्कृष्टता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का उत्सव है। ये उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। और अब एक खास खबर, शासकीय संभागीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 14 जुलाई तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। कक्षाओं का संचालन 15 जुलाई से होगा। प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, बीमा और इसी तरह की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण अवधि 8 माह तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा यदि आप उद्यमी हैं और अपने उद्योग और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ICAI के ग्वालियर ब्रांच जा सकते हैं। यहाँ ICAI की ग्वालियर शाखा की ओर से MSME महोदय

0: भी में हो रुक जाए।
1: इस गीत के साथ ही अब हम समेटते हैं अपने इस कार्यक्रम को। कल फिर नई खबरों और नगमों को लेकर हाजिर होंगे आपके अपने इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए हेमंग कोठलकर का ख्याल गायन, राग मियां की तुड़ी।

0: इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में अभी आप हेमंग कोल्हटकर का ख्याल गायन सुन रही थी, राग था मियां की तोड़ी। हारमोनियम पर लहरा दे रहे थे अनिल दंडोतिया, तबला संगीतकार थे मनीष करवाड़े और सारंगी पर लहरा दे रहे थे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मानसून और प्रशासनिक तैयारियों की। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस वर्ष जिले में जून माह में औसतन 743.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश की शुरुआत होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नगर पालिका परिषद बड़वानी द्वारा मानसून के दौरान शहर में संभावित जल भराव, बाढ़ या

अतिवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। नगरवासियों को सूचित किया गया है कि बारिश में यदि शहर के किसी भी क्षेत्र में जलभराव या अन्य कोई समस्या होती है तो नागरिक सतर्कता बरतें और तत्काल राहत व बचाव दल से संपर्क करें। अब बात करते हैं जन स्वास्थ्य की, जिसके तहत बड़वानी में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 2,61,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वहीं मृदा परीक्षण और कृषि विकास के क्षेत्र में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिले को इस वर्ष 7,718 मिट्टी परीक्षण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले अभी तक 7,178 मिट्टी नमूनों की जाँच की जा चुकी है। अब बात नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता की, जिसके तहत पिछले दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी द्वारा नशा मुक्ति सप्ताह के दौरान गांवों में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन कर युवाओं और समुदाय को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान 24 मार्च से जिले भर में चलाया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय जेल बड़वानी में 10 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रतिदिन 100 कैदियों की टीबी की स्क्रीनिंग की। अब बात आपदा प्रबंधन और युवा शक्ति की। पिछले दिनों 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के तीसरे सत्र का समापन हुआ। इस सत्र के दौरान जिला आपदा प्रबंधन के आदेश से बाढ़ बचाव व सिंहस्थ कुंभ के लिए 231 युवाओं को संभागीय सेनानी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया। अब बात करते हैं खेल जगत और बड़वानी के गौरव की। हॉकी इंडिया द्वारा ओमान में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए अंडर 18 महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है, जिसमें बड़वानी शहर की स्नेहा दावड़े को पुनः भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं व्यापार और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता की, जिसके तहत पिछले दिनों दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल SC/ST हब MSME मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में सेंधवा में SC/ST उद्यमिता जागरूकता एवं स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं सिकल सेल नियंत्रण की, जिसके तहत पिछले दिनों विश्व सिकल सेल दिवस पर आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा एड ऑन थेरेपी के रूप में सिकल सेल से प्रभावित 201 रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण घर घर जाकर किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें तो पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम रामकुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर जयति सिंह, SP पदम विलोचन शुक्ल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, छात्र व नागरिक उपस्थित थे। वहीं पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में पिछले दिनों दुग्ध उत्पादकों की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन जिले में किया गया। कार्यशाला के दौरान उपसंचालक डॉ. दिनेश पटेल ने पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, संतुलित आहार बनाने की विधि और दुग्ध उत्पादन के लाभ तथा साइलेज की ई मार्केटिंग व गोरस एप्लीकेशन की जानकारी प्रदान की। बड़वानी जिले की चिट्ठी में अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता की। साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने, आमजनों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से पिछले दिनों जिले में 15 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। और अंत में बात जल संरक्षण और जलगंगा संवर्धन अभियान की, जिसके तहत बड़वानी जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन सहित विभिन्न कार्यों को संपादित किया गया। वहीं कल यानी 30 जून को जलगंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय समापन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। जिले में कुल 5,666 विकास कार्यों को पूरा किया गया है, जिसके चलते जिला प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। तो श्रोताओं, ये थी बड़वानी जिले की चिट्ठी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे बड़वानी जिले की चिट्ठी, सिसोदिया का था और वाचक थे अभिषेक कटियार।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

पा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे के भवतारणी, श्रवण और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन श्रोता मित्रों ने। गनगोला दादागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रिफत खान, सावरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। तहसील रोड गंज डुंडवारा से के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील। पटियाला रोड गंज डुंडवारा से एम खलील कुरी।

कुरैशी नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, अकील कुरैशी और बेगम और बेबी आर्या हबीबा, ज़िला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अंजना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित रितु और मुकेश जगताप, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमुनिया, ज़िला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और उनके परिवार के सभी सदस्य, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता मित्रों ने, जिला सतना न्यू बस्ती मध्य प्रदेश से राजेश, राकेश, सुमन, अरविंद, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, थनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के, शास्त्री नगर बीड शहर से किसान सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, पद्मा टाकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह, दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा, ग्राम संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी यादव।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता मित्रों ने। गांव जौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। ग्राम नगर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, चित्ररेखा वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, उमेश और धनेश्वरी वर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। मजनू का टिल्ला से कमल बलूचा, मधु बलूचा, सागर बलूचा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होंदा। श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभर, अंबिका चाविका, सोनू कुंभर और अर्चना कुंभर। कोयती बस्ती पुनावली से अजय सोनवणी, करिश्मा सोनवणी, अभिका सोनवणी और साईशा सोनवणी। कुंभर गली श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली।

रोहिणी दली, ऋषिकेश दली और जीविका दली, पुनावली पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, विशाखा सोनवनी, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम रबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अजीत गवणकर राही, श्रीमती सविता गवणकर, प्रिंस एकांश गवणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवणकर, सिद्धांत गवणकर, अर्जुन गवणकर, आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवणकर, सुमित गवणकर, कुमारी ध्वनि गवणकर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण ने।

पद्मावत फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए नीति मोहन की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्लू, उदयपुर राजस्थान से रमेश नचानी और भारती नचानी, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, कुंभर गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रागी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे, नाज मंजिल महसौली सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निगहत वर्मी, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, महस वाणी मलकापुर महाराष्ट्र से धन शत्रुघ्न धांडे, निनाजी धांडे, स्वप्निल धांडे, वाल्मीकि धांडे, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रज्ञेश सिंघई, प्रीतेश सिंघई और उनके परिवार के सभी सदस्य, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन, हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और उनके साथी, गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद आयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही, ग्राम बैठना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से परमेश्वरी साहू, राजबत्ती काजल पूर्वी, हेजल रेशमा और राजेश साहू, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पद्मावत का ये गीत नीति मोहन की आवाज़ में।

ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव मुस्कान वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका और रमेश चंद्रांगी बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे संगीता घटे साक्षी घटे जयश्री महत्रे अंजनी करवा बाला साहब करवा रामनिवास अग्रवाल धनंजय ट्यूब और पीवी कुलथे शाहजी नगर देगुलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सरिता भाकरे रघुनाथपुर श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी कोयते बस्ती पुनावली से अजय सोनवनी करिश्मा अविका और उनके परिवार के सभी सदस्य दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मेघलानी बबीता मेघलानी सुभाष योगी और उनके परिवार के सभी सदस्य रोहिदास चौक पांडरपुर शहर से यशराज शिंदे प्रशांत शिंदे ऋषि शिंदे और कृष्णा घुड़के बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास अनीता पुष्पा श्रीवास अंजू योगिता श्रीवास रज्जन साहू हेमंत नामदेव धर्मदास वाधवानी और उनके परिवार के सभी सदस्य मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े वसंतराव भोजने और पीएस नवनकर हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अकलम मोहम्मद अफसल और नफीसा प्रवीण बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी डॉक्टर सोनम आदिबा और दानिश अंसारी गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्री माली और मीना श्री माली मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा दंतरेंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म परदेश का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और परमजीत फातिमा कौर, सरगुजा मेन पार्ट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा और रेशमा थापा, झांसी से फखरुद्दीन अंसारी, बदरू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी और फर्जू वली अंसारी, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी, जेल रोड मथुरा से सफरुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, कल्लू मल्लू और कालिया बेलदार, छठिया पोखर डुमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्बू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, बिहारी भवन दिल्ली से अकरम कटुरिया और उल्लाह कटुरिया, सीतामढ़ी बिहार से मुसरफ जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीनाज और नाजिया नूरी नाज।

तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धांडे, वकील वाल्मीकि निनांजी धांडे और स्वप्निल धांडे, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़सी और विनोद खड़सी, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजपैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गच्छा गाविया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और उनके परिवार के सभी सदस्य, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश कांबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये गीत पलक मुछाल की आवाज़ में।

गांव कलाना, तहसील भादरा, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्ध। गांव टोरुवाल, ज़िला नवाशहर, पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और उनके परिवार के सभी सदस्य। लुम्बिनी नगर आकोला से राहुल, सम्यक, शरण और मीना बंसोड़। गाड़गी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और उनके परिवार के सभी सदस्य। सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा और उनके परिवार के सभी सदस्य। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। प्रमिलागंज आलूट जिला रतना मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनक दीप कौर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और रीवा तथा सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच रात 10 बजे से चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
2: नमस्कार श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश के गीत और आपको हमें करना होता है फोन। तो हमारे फोन नंबर है 2660902 और STD कोड है 0755। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। साथ ही कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हेलो,
3: हेलो,
2: नमस्कार, फोन करें गीत सुने।
3: नमस्कार मैम
2: जी, किन से बात हो रही है?
3: रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास से।
2: रानू गुप्ता जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक हूँ मैम, आपकी क्या हालचाल?
2: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या करती हैं रानू जी?
3: मैम मैं हाउस मेकर हूँ।
2: और क्या चल रहा है अभी आपका?
3: फिलहाल तो मैं घर में ही हूँ। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे।
2: क्या नाम है आपके बेटे का?
3: मेरे बेटे का अश्विन गुप्ता।
2: अश्विन, अश्विन को हमारी ओर से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: थैंक यू मैम। अभी क्या है मतलब करीब

0: इवन 6 महीने से हम लोगों ने कॉल नहीं किया, मैंने और नंदिनी ने, बट आज मेरे बेटे का बर्थडे था तो हमने सोचा चलो कॉल कर लेते हैं। और एक जो जबलपुर के श्रोता है वंदना दीदी, उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 6 महीने से कॉल नहीं किया बट वो हमें याद करती है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे वाह, वेरी नाइस। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
0: मूवी का नाम मुझे नहीं पता, बस गाने के बोल बता देती हूँ, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते।
1: खून भरी मांग का गीत है मुझे लगता है ये।
0: जी जी बिल्कुल सही बात है, ये सही है। बस यही सॉन्ग सुना दीजिए।
1: हंसते हंसते कट जाए रास्ते, खून भरी मांग का ये गीत आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: फोन करें गीत सुने।
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: दीदी, मैं शिवपुरी जिले के रामखेड़ी मारोरा से मोतीलाल परिहार बात कर रहा हूँ।
0: मोतीलाल परिहार जी,
1: दीदी कैसी हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया, इस समय एक खेती का काम चल रहा है, टमाटर की पौध तैयार कर रहे हैं।
0: अच्छा, टमाटर की खेती कर रहे हैं अभी आप?
1: जी जी।
0: अरे वाह, अरे वाह। तो अभी क्या क्या चल रहा है उसके अंदर?
1: अभी तो पौधा मतलब छोटे छोटे पौध करी है, अभी तो पौध तैयार हुई है।
0: अच्छा।
1: बरसात हो जाएगी, 2-4 दिन में तो लगाते हैं।
0: हाँ
1: जी।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा। और क्या क्या लगाते हैं आप?
1: टमाटर, मिर्ची, सब्जी होती है हमारे इधर बहुत।
0: तो सभी तरह की सब्जियां लगाते हैं?
1: जी जी, बाहर से गाड़ी आती है और टमाटर चालू हो जाता है हमारा से।
0: अच्छा।
1: बाहर की गाड़ी पर।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मौसम हो रहा है बारिश का?
1: जी मैडम, अभी क्या है, 1-2-4 दिन में होने वाली है बारिश, तो एक आध दिन बरस गया है, थोड़ा कम बरसा है अभी।
0: हाँ, अभी थोड़ा सा बारिश उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, है ना?
1: जी जी, ऐसे ज्यादा बारिश हो जाती है ना, उसमें गर्म ठंडक आ जाती है, उसमें अच्छी पौधे लगाए जाते हैं।
0: जी। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: आई मिलन की रात को सुना जी, कितने दिनों के बाद आई
0: जी। अनुराधा पौडवाल की आवाज में, साथ ही मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत है।
1: जी।
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं, गीत उपलब्ध है हमारे पास।
1: नमस्ते दी।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: मैं ग्राम बाबूपुरा तहसील कोट जिला जालौन से सुरेंद्र पाल सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: सुरेंद्र पाल सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी सब बढ़िया है, अच्छे आनंद में है खूब।
0: क्या चल रहा है
1: इस समय? कुछ नहीं, धान की वो चल रही है बुवाई।
0: और क्या लगाते हैं आप?
1: इस समय तो केवल धान लगाते हैं खरीफ में।
0: अच्छा
1: जी,
0: और रबी में क्या लगाते हैं?
1: रबी में गेहूं है, मटर है, मसूर है, सरसों है, ये सब लगाते हैं।
0: तो अभी आप खेत में ही हैं?
1: नहीं, अभी खेत से आए, घर पे हैं।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है।
1: तो मैंने सोचा लगा ले फोन, शायद लग जाए।
0: हाँ देखिए लग गया
1: जी।
0: अच्छा सोचा आपने। तो कौन सा गीत सुनेंगे बताएं?
1: अमृत का सुनवा दीजिए, दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनवा देते हैं, मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत है
1: जी।
0: तो ठीक है, बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं, आपके रेडियो सेट्स पर आएगा। और कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो हेलो, फोन करें गीत सुने।
0: जी नमस्कार,
1: हम ग्राम छात्र तहसील उदयपुर जिला रायसेन से भगत जी बात कर रहे हैं।
0: भगत जी कैसे हैं आप?
1: जी हम बहुत बढ़िया। दीदी आप कैसे बरसा हो रहे हैं?
0: अभी मौसम बना हुआ है, अभी हो नहीं रही लेकिन।
1: अच्छा मतलब भोपाल में अच्छा मौसम बना हुआ है?
0: हाँ मौसम बन रहा है, हो जाएगी मुझे लगता है आधे घंटे में।
1: दीदी हम प्रवचन करते हैं।
0: अच्छा आप प्रवचन करते हैं?
1: जी हम आपको एक लाइन सुना रहे, सुनो
0: बताएं।
1: राम

0: छोटे।
1: अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। क्या आप राम कथा करते हैं?
0: जी जी, हम राम कथा करते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है भगत जी। और जी, गीत कौन सा सुनेंगे आज बताएं?
0: जी, हमारे गांव में है वो बिनु साहू की मोड़ी दीक्षा को ब्याहो। मतलब दीक्षा साहू को ब्याहो, तो हमें सुनने हैं वो गाना। फिल्म का नाम है विवाह।
1: क्या फिल्म का नाम है?
0: विवाह फिल्म को गाना, वो गाना हम बता रहे हैं।
1: अच्छा, विवाह

0: बिल्कुल बिल्कुल, पामेला जैन और श्रेया घोषाल की आवाज में।
1: हाँ, पामेला जैन और श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना है,
0: विवाह फिल्म का ये गीत। और आपने बताया दीक्षा साहू के लिए गीत आप गाना चाहते हैं।
1: दीक्षा साहू की आज बारात आ रही है, तेज है, हमें जो गाना सुनने हैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया, तो आपका गीत आपको सुनवाते हैं आप कार्यक्रम में। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: दीदी, आपको भी धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: हेलो मैम
0: जी, नमस्कार।
1: मैं हीरू बोल रही बाग से मैम।
0: हीरू?
1: हीरू परिहार।
0: हीरू परिहार बोल रही हैं, कहाँ से?
1: आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम बढ़िया हैं मैम।
0: कहाँ से बात कर रही हैं हीरू जी?
1: मैं बाग जिला धार।
0: जिला धार से बात कर रही हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या चल रहा है?
1: सब बढ़िया है, अभी तो मौसम भी ठंडा है। आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ। आप क्या करती हैं हीरू जी?
1: मैं यहाँ दुकान लगाती हूँ, यार सोचती नहीं देखती हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं फिर हीरू जी?
1: वो सुना दो, पति मेरा देवता है, जैसा भला है बुरा है, जैसा मेरा पति देवता है, वो वाला।
0: नसीब अपना अपना फिल्म से ये गीत है।
1: हाँ हाँ
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये गीत है।
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने
1: जी। नमस्कार नमस्कार दीदी जी, कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं, और जहां मैंने फोन लगाया है उसके ही हम प्रवासी हैं।
0: बढ़िया, बहुत अच्छा, किन से बात हो रही है?
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ दीदी जी को, और सत सत राम राम भेज रहा हूँ चित्रकूट धाम से।
0: दिनकर जी चित्रकूट से
1: जी, और बहन जी का भी नाम जानना चाहूँ दीदी जी।
0: जी मेरा नाम रक्षा है।
1: जी रक्षा जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, हम धन हो गए आपके जो है आपसे बात करके।
0: जी जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो क्या चल रहा है दिनकर जी?
1: बिल्कुल इस समय जो है नर्सरी पर बैठा हूँ, धान की नर्सरी तैयार हो रही है और यहाँ पर छाया भी है, चारपाई में बैठा हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: अरे वाह।
1: जी जी जी बिल्कुल, और रेडियो में गीत भी चल रहा है और आपका फोन भी जो है आपके साथ बात भी कर रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो फिर बताएं कौन से गीत सुनेंगे आप?
1: मुझे फिल्म जीत का गीत सुनना, जीत का JEET।
0: जीत फिल्म से कौन सा गीत?
1: अभी साथ लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं।
1: ये मेरे पास जो है बब्बू वर्मा जी बैठे हैं, वो उनके साथ और प्रेम दास बाबा फूलचंद मनकारी से जो है उनके उनके साथ सुनूंगा ये गीत।
0: कार्यक्रम में ये गीत अब आपको सुनवाए देते हैं फिल्म जीत से।
1: जी नमस्कार दीदी जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने जी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं आज?
0: जी मैं रक्षा बात कर रही हूँ, मेरी बात किन से हो रही है?
1: मैं सतना से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश सतना से, कविता।
0: कविता जी सतना से बात कर रही हैं
1: जी।
0: कैसी हैं आप कविता जी?
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: क्या चल रहा है कविता जी, मौसम कैसा है?
1: वो मैं पता है, दो मैंने 16 तारीख को फोन लगाया था तब लग गया था। और आज फिर मतलब दो तीन दिन से ट्राई कर रही थी तो वो लग ही नहीं रहा था, फिर आज मैंने फिर देखा, अभी लगा के देखूं, अब लग गया।
0: बहुत बहुत बधाई हो।
1: हाँ मैं, बहुत अच्छा लगता है बात करने में।
0: जी जी जी जी, वो तो आपकी आवाज़ सुन के हमें पता चल रहा है कि आपको बहुत खुशी हो रही है, हमें भी बहुत खुशी होती है आप जैसे सभी श्रोताओं से बात करके।
1: वो पता है, मैंने अपनी बेटी को बताया कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ और मैं अपने गीत बताती हूँ, वो बोल रही है मम्मी मेरे को भी रेडियो लेके दो।
0: अरे वाह। क्या नाम है आपकी बिटिया का?
1: मेरी बेटी का पूजा।
0: पूजा पूजा, अच्छा जी, तो कौन सा गीत सुनेंगी आज कार्यक्रम में?
1: पूरब और पश्चिम का, वो ये है प्रीत कहां की रीत सदा,
0: पूरब और पश्चिम फिल्म का। बिल्कुल, ये गीत तो हमारे पास उपलब्ध है, ये सुनवा देते हैं आपको।
1: हाँ,
0: महेंद्र
1: हाँ,
0: कपूर
1: हाँ।
0: की आवाज में। बिल्कुल,
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: बहुत खुशी हुई मेरे को, बहुत खुशी।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा कविता जी, ऐसे ही हमें फोन करते रहा कीजिए।
1: हाँ वही 15 दिन के बाद किया है मैंने।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद। तो अब आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं कविता जी की पसंद का ये गीत फिल्म पूरब और पश्चिम से, आवाज है महेंद्र कपूर की।
2: जब जी

0: गीत सुने।
1: हेलो
0: जी। हेलो
1: जी दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: जी दीदी, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी,
0: बेटा सिंह यादव जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी, बढ़िया है, अच्छा है, और हमने सोचा बातचीत कर लिया जाए, फोन करें, गीत सुने में तो आज फोन लग गया है।
0: अरे वाह, तो क्या चल रहा है बेटा सिंह जी?
1: जी दीदी जी, वैसे तो अभी घर बनवा रहे थे, तो वही काम कर रहे थे और ट्राई भी कर रहे थे, तो फोन भी लग गया, तो आपसे बातें भी हो रही
0: है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम राजा सीरीज 420 और गीत की बोल है रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तो इसको दिया।
0: बहुत बहुत अच्छा गीत, मुझे भी बहुत पसंद है ये गीत।
1: जी दीदी, कौन दीदी बात कर रही हैं आप?
0: मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी दीदी बिल्कुल, और हमारी आपसे बात अक्सर हुआ करती थी जब एकदम लाइव कार्यक्रम चलता था।
0: जी,
1: और बिल्कुल आपका बात करने का तरीका है कि यार एक जो अंदाजा है, बहुत सचमुच मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको गीत सुनवा देते हैं आपकी पसंद का, श्री 420 से।
1: ओके दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए हैं। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक हैं। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई अब दुनिया के 8 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, रीवा तथा सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का सबसे पहला ये गाना हम ले रहे हैं फिल्म शान का एक गीत। आवाजें हैं आर डी बर्मन, मोहम्मद रफी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का ही है। सुनते हैं ये गीत और इस गाने को पसंद किया है। गाना सुनने के बाद हम आपको बताएंगे। सुनिए ये गीत।

शान फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आर डी बर्मन और साथियों को, और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था आर डी बर्मन का। इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है वो इस तरह से है, लखड़ बाजार खंडवा से लिखने वाले हैं मोहम्मद रफ़ीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, विनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े ने, और ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से लिखने वाले हैं अशोक कुमार वागे, वंदना वागे, भूपेंद्र वागे, ईश्वर बाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा बाघे। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमिता राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। अगला गाना लिया है हमने आशा भोसले की आवाज़ में, इसमें दूसरी आवाज़ शशि कपूर की है, फिल्म का नाम है सुहाग।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म श्री 420 से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत, और इस गाने की और पिछले गाने की दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है। भोपाल से लिखने वाले हैं बिंदु नारायण गौतम, लक्ष्मी ध्रुवपाल सिंह, मदन गोपाल शुक्ला, चित्रकला सेन, अरविंद शर्मा, इंद्रजीत विश्नोई और

परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिया, शोएब, मुश्तबा, रऊफ और शाहिद। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गांधी बाग अकोला से। लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। और इसी गाने की फरमाइश के लिए हमारे पास में जो ख़त आया है ये है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा ज़िला सागर से। लक्ष्मण रेखवार, विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनुरत रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म अब्दुल्ला से, आवाज़ किशोर कुमार की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी वर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है घंटाघर चौक खंडवा से, लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्रपति संभाजीनगर से, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। इसी गाने की फरमाइश आए है शाहू नगर यवतमाल से, लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली।

गई और जाकर समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस आई तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर सम्राट ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप कर स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा, सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट के दिए अलग महल में रह रही भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजय श्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। भुवन मोहिनी की हत्या की कोशिश करने के अपराध में विजय श्रवा ने उन दोनों को दीवार में चुनवा दिया। सम्राट ने एक दिन भुवन मोहिनी को बुलवाया और चंद्रहासिनी के पिता और इंद्रप्रस्थ महाराज आदित्य सेन की शर्त को बताया। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं और अंतिम कड़ी में।

0: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
1: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
0: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
1: टाला जा सकता है।
0: कैसे?
1: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।
0: मैं सहर्ष अपना शीश देने को तत्पर हूँ।
1: इसका अर्थ है कि मैं भी अपने जीवन से हाथ धो लूं?
0: नहीं सम्राट, यदि देश दासत्व की श्रृंखला से जकड़ा गया तो भावी संतान अपने पूर्व पुरुषों पर हंसेगी। इतिहास के पन्ने साक्षी होंगे उस अधः पतन के जिसका हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। सम्राट, क्या भविष्य में भारतीय संतानें सम्राटों के नाम पर घृणा और तिरस्कार की वर्षा न करेंगे जब वे इतिहास के पृष्ठों में अतीत के संस्मरणों पर एक दृष्टि डालेंगे? तो उन्हें विलासी सम्राटों की काली करतूतों के प्रति घोर विरक्ति नहीं होगी? भावी संतानें न कहेंगी कि इंद्रिय लोलुप शासकों ने सुरा और सुंदरी की उपासना में भारतीय वीरता को कलंकित किया है? इससे तो कहीं अच्छा है कि आज का सम्राट अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करे। जो सम्राट अपनी साम्राज्ञी को भयानक दंड दे सकता है, वो राष्ट्र में एक नर्तकी के मोह में पड़कर निरपराध प्राणियों की हत्या द्वारा रक्त वैतरणी में क्यों निमग्न होना चाहता है? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि युद्ध के आमंत्रण को स्वीकार करने से कहीं अधिक श्रेयस्कर ये है कि महाराज आदित्य सेन को सूचना भेज दी जाए कि शीघ्र ही उनकी सेवा में भुवन मोहिनी का शीश भेजा जाएगा।
1: नहीं भुवन मोहिनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
0: सम्राट, आपको स्मरण होगा कि इंद्रप्रस्थ के आश्रम में आपने मुझे दो पुरस्कार देने की बात कही थी। एक पुरस्कार तो मैंने ले लिया था, परंतु दूसरा पुरस्कार?
1: मुझे स्मरण है भुवन मोहिनी।
0: तो आज दूसरा पुरस्कार देने का समय आ गया है मेरे प्राण प्रिय। मुझे मृत्युदान दीजिए। मैं नहीं देख सकती कि एक गलित और पतित नर्तकी के जीवन का मोह आपको कर्तव्य कर्म से विलग करता जा रहा है। सत्य यह है कि एक सम्राट के दृष्टि में समस्त शासित प्रजा एक समान है। यदि मेरे तुच्छ शरीर का मोह राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बना तो आपके पवित्र और राष्ट्राभिमानी चरित्र पर कलंक लग जाएगा। एक और धर्मपत्नी का न्याय के नाम पर क्रूरतापूर्वक विनाश,

0: और दूसरी ओर एक नर्तकी की आसक्ति के कारण राष्ट्र का सर्वनाश।
1: प्रियतम, मैं तुम्हारे चरणों में गिरती हूं। मैं इस जीवन में तुम्हारी बनकर भी अपवित्रतावश तुम्हें स्पर्श करने तक से हिचकती रही हूं। मेरी शून्य छाया तुम्हारे उदास जीवन और चरित्र के लिए मुझे महान कलंक के समान रही है।
0: यदि जनता के सामने अपनी तलवार से मेरा शीश काट कर महाराज आदित्य सेन के समीप भिजवा सके तो इससे अधिक निश्चल चरित्र इतिहास के पन्नों में ढूंढने पर भी मिल सकेगा? मुझे संदेह है।
2: इसका अर्थ है कि मैं अपना हृदय पिंड निकाल कर फेंक दूं, अपने जीवन की अकेली वासना जिसके सहारे मैं आज तक जीता रहा हूं, आज कुचल कर देहाभिमान और आसक्ति से विरक्त हो जाऊं और अपने हाथों अपने मृत्यु की आज्ञा प्रदान करूं? जिन आशाओं के तिनके चुनकर मैंने अपने प्राण पखेरु के बसने के लिए स्नेह का नीड़ बसाया था, उसे न्याय की निष्ठुर दीप शिखा द्वारा छुलसा दूं, भस्म कर दूं?
0: सम्राट, यदि मेरी सर्वनाश से राष्ट्रव्यापी महासमर की अग्नि प्रज्वलित होने के पूर्व ही बुझाई जा सकती हो तो भुवन मोहिनी का शीश धड़ से विलग होने को प्रस्तुत है। महाराज आदित्य सेन की तुष्टि के लिए आपको मेरी मृत्यु का आदेश देना ही होगा।
2: और इसके साथ ही मुझे स्वयं के लिए अपनी चिता को अपने हाथों प्रज्वलित भी रखना होगा। प्रिय, विधि विधान के क्रूर निर्णय को स्वीकार करने से पूर्व एक बार जीवन की महान अतृप्ति की तुष्टि के लिए मृग जल का सहारा ही मिलता, क्या ऐसा संभव नहीं था?
0: संभव था प्रिय, किंतु इससे सम्राट के जीवन की महत्ता धूल में मिल जाती। इसलिए यदि जन्मांतर सत्य है, यदि वासना का अस्तित्व जीव को पुनर्जन्म के लिए बाध्य करता है तो इस जीवन में नहीं। सम्राट, फिर कभी हमारा मिलन तो होगा ही, तभी जन्म जन्मांतर के वासना की तुष्टि के क्षण उपस्थित होंगे और मिलन की आशा की शुभ घड़ियां अंतिम मुक्ति की वरदायिनी सिद्ध होंगी।
2: यदि मैं आज सम्राट ना होता तो कितना अच्छा होता। आह, इस महत्ता ने मुझे साधारण मनुष्य के जीवन से भी वंचित कर दिया। जीवन का प्रत्येक क्षण अभिशापित, उत्तप्त और प्रिय के अभाव में बीत गया। सम्राट बनकर भी अपनी आकांक्षाओं को तुष्टि के जल से शीतल न कर सका और मिलन की छलना ने चिर वियोग के सम्मुख ला खड़ा कर दिया। अच्छा प्रिय, हमने जाने अनजाने जिस वृक्ष को पाला पोसा था, स्नेह का जल पिलाकर जिस तरह उसे पल्लवित और कुसुमित किया था, उसी वृक्ष को फल प्राप्त करने से पूर्व ही जड़ से काट कर नष्ट कर देने का पवित्र कर्तव्य मैं करूंगा। तुम मुझे सम्राट बनाकर साधारण मनुष्य नहीं रहने देना चाहती, भले ही उभय प्राणियों का जीवन मृत्यु की नीरव गोद में धराशायी हो जाए, मुझे स्वीकार है। आज उस मोहमयी मदिरा के प्रभाव का अंतिम क्षण महान जागरण का संदेश लेकर आया है, स्वागत है उस क्षण का। हम दोनों हृदय के सन्निकट रहकर भी एक दूसरे के न हो पाए, अब एक दूसरे के अंत का कारण बनेंगे। दुनिया की दृष्टि से ओझल होकर महान मिलन सागर में विलीन हो जाएंगे। जाओ, मेरे जीवन के स्नेह की प्रतिमा, आज तक मैं तुम्हारे रक्षक होने का अभिमान हृदय में भरता आया था, किंतु ये क्षण स्नेह के अंतिम मिलन के अंतिम क्षण है। अब तुम्हारा ये रक्षक विजयश्रवा तुम्हारे जीवन के भक्षक के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा।
1: आपके चरणों को प्रणाम प्रियतम। जीवन भर के संचित अपराधों की क्षमा याचना का ये क्षण मूल्यवान है। इस पाप संताप में जीवन को मैं स्वयं जीवित रखने में असमर्थ हो चुकी थी, इसलिए मेरे शीश को अपनी तलवार के झटके से काटना। मैंने सब कुछ पा लिया प्रीतम, प्यार का प्रतिदान। विदा।
2: ठहरो प्रिय, तुम जानती हो वीर की तलवार एक नारी की गर्दन में शोभा नहीं देती। दूसरे, नारी हत्या जघन्य अपराध है।
1: सब कुछ है मेरी प्रीतम, किंतु अंतिम लालसा फिर भी बची है। मैं चाहती हूं कि पाप पुण्य के द्वंद से उठकर मेरे प्रियतम स्वयं मेरी गर्दन पर वार करें, ताकि मेरा लाल लहू प्रियतम के चरणों पर गिरे और मेरा अपवित्र जीवन पवित्र हो जाए। अब अंतिम बार मुझे निराश न करना मेरे देवता।
2: अच्छा प्रिय, तुम्हारे अंतिम आग्रह को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा।

0: महामंत्री।
1: आज्ञा सम्राट।
0: हमने ये दो पत्र तैयार करवा दिए हैं। प्रथम उत्तराधिकार पत्र है, जिसके अनुसार मेरा 5 वर्षीय राजकुमार अखिल भारत का सम्राट होगा, और द्वितीय पत्र महाराज आदित्य सेन के लिए है, जिसमें उनके प्रतिशोध पूर्ण भावना की पूर्ति का अंतिम आश्वासन भुवन मोहिनी का शीश भेजने का समाचार है। महामंत्री, कल प्रभात काल के पश्चात एक जनसाधारण और सामूहिक जनता की सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें महाराज आदित्य सेन के वैर विग्रह पूर्ण पत्र के आधार पर धारा नगरी के सम्राट की ओर से दोनों राज परिवार के बीच स्नेह संबंध स्थापित रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा, और महाराज आदित्य सेन की आंतरिक तुष्टि के लिए भुवन मोहिनी का रक्त से लथपथ शीश। आज तक मैंने गद्दी की सेवा निश्चल और न्यायपूर्ण हृदय से की है, किंतु अब मेरा मनुष्यत्व मुझसे विदा ले रहा है और उसके स्थान पर एक ऐसी निष्क्रियता प्रवेश कर रही है जो श्वासों के बचते हुए तार को किसी भी क्षण निश्चेष्ट कर देगी। इस राज सिंहासन को प्रणाम करता हूं, जिसके प्रति मेरे पूर्वज सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और व्रती रहे हैं। मैंने इस परंपरा को स्थापित रखने का मात्र अकिंचन प्रयास किया है।
1: धारा नगरी के सम्मानीय नागरिक गण, आज इस अति विशेष जनसभा में स्वयं सम्राट विजय शोभा उपस्थित हैं, और उपस्थित हैं देवी भुवन मोहिनी। आपको ज्ञात है कि देवी भुवन मोहिनी की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में सम्राट ने अपनी पत्नी चंद्रहासिनी और उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला को मृत्युदंड दिया था। इससे कुपित होकर चंद्रहासिनी देवी के पिता इंद्रप्रस्थ नरेश महाराज आदित्य सेन ने हमारे राज पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी है। महाराज आदित्य सेन ने चेतावनी दी है

0: किया तो सम्राट विजयश्रवा, देवी भुवन मोहिनी का विच्छेदित शीश भिजवाएं, या फिर उनका आक्रमण सहने के लिए तैयार रहें। प्रिय नागरिकों, हमारे जनप्रिय सम्राट विजयश्रवा इंद्रप्रस्थ नरेश की इस चेतावनी से चिंतित हो गए कि यदि भारत के इन दो शक्तिशाली राज्यों में आपस में युद्ध हुआ तो इसका लाभ हूण अवश्य उठाएंगे। इसीलिए हमारे सम्राट युद्ध को टालना चाहते थे, परंतु इसके पहले कि वो कोई निर्णय लेते, देवी भुवन मोहिनी ने स्वयं अपने आप को आत्मबलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया है। देवी भुवन मोहिनी लगातार राजनीति में अपने आप को समर्पित करती आई हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भुवन मोहिनी को मत मारिए सम्राट।
2: हम भुवन मोहिनी का बलिदान नहीं चाहते।
1: ये बलिदान नहीं होना चाहिए।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आप जो कह रहे हैं हम भी वही चाहते। ऐसा करते समय हमारी आत्मा फट रही है, हमारा हृदय चीत्कार कर रहा है, परंतु हम विवश हैं। हमारे और देवी भुवन मोहिनी के बीच क्या संबंध है आप भली भांति जानते हैं। यथार्थ है कि राज परिवार की प्रतिष्ठा और राष्ट्र के व्यापक हित में हमने सदैव भुवन मोहिनी को दुखी दिए हैं, सुख कभी नहीं। देवी भुवन मोहिनी ने भी कभी सुख के बारे में नहीं सोचा। कभी नारी मर्यादा तो कभी राज परिवार की मर्यादा, इन मर्यादाओं के व्यवहार में उन्होंने सदा अपने आप को व्यय ही किया है, अर्जित कुछ नहीं किया। देवी भुवन मोहिनी आज भी चाहें, अब भी चाहें तो मुझसे लिए गए वचन से मुझे मुक्त कर सकती है। हम कैसे भी सही भावी परिस्थितियों से निपटने में जुट जाएंगे, अपने राष्ट्र की एकजुटता को बनाए रखेंगे। भुवन मोहिनी, एक बार फिर से मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे द्वारा दिए गए वचन से मुझे मुक्त करो।
4: नहीं सम्राट, मैं स्थित प्रज्ञ हूं और आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी रहिए। मुझे गर्व है कि मेरे रक्त का प्रत्येक बिंदु हिंसा के अपार सागर को रोक पाने में समर्थ हो रहा है। पूज्य सम्राट, मेरे जीवन के समस्त अपराधों को क्षमा करें और अपनी तीक्ष्ण कटार से मेरा पतित शीश काट कर मुझे गौरवपूर्ण मृत्यु का दान दें।
3: आज मैं ये क्या करने चला हूं? मेरे हाथ में ये कटार और मेरे समक्ष अपना शीश कटाने के लिए अवनत तुम भुवन मोहिनी, एक ही पल में क्या से क्या हो जाएगा। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी जिह्वा, सब कुछ शांत हो जाएगा।
4: मेरे स्वामी, परीक्षा की गहनतम घड़ी में आपका विचलन शोभा नहीं देता। आपकी दुर्बलता कहीं मुझे लज्जित न कर दे मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहती। वार करिए मेरे प्रभु, वार करिए।
3: जिस शरीर को मैंने अपने हृदय से भी बढ़कर प्यार किया, आज उसी के विनाश का कठोर दायित्व निभाने की शक्ति दो ईश्वर। भुवन मोहिनी सावधान।

0: महामंत्री, पूर्व निश्चित सैनिकों को आदेश दीजिए कि इसी क्षण भुवन मोहिनी का मुंड रुंड लेकर महाराज आदित्य सेन की सेवाओं में उपस्थित हों।
1: आज्ञा सम्राट।

आज मेरी प्रियतमा नश्वर जीवन से सदा के लिए विदा ले चुकी है। अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं बचा। एक मानव सम्राट बनकर कर्तव्य के लिए मुझे जिस तरह निर्मम बनना पड़ा, मानो मेरा मनुष्यत्व सदा सदा के लिए छिन गया हो। संज्ञा शून्य, भावनाहीन और ये नीरस जीवन लेकर मैं करूंगा ही क्या? मेरे अटके हुए ममता के धागे तो उसी समय टूट गए थे जब मेरी तलवार भुवन मोहिनी की गर्दन पर वार करने के लिए उठी थी। जीवित भुवन मोहिनी की आवश्यकता तो जीवित विजयश्रवा के लिए थी। जब भुवन मोहिनी ही नहीं रही तब विजयश्रवा ही क्यों जीवित रहे? आह, भुवन मोहिनी के बिना पंख विहीन पक्षी की भांति हो गया हूं मैं। अब भुवन मोहिनी का चित्र मात्र एक वस्तु है जिसे मेरी आंखें स्वीकार कर सकती हैं। जब तक सांसों की डोर बनी है भुवन मोहिनी, मेरी आंखों के सामने तुम ही रहोगी, मात्र तुम। जैसी तुम निष्प्राण कठोर प्रस्तर, वैसा ही मैं भी हो रहा हूं, निष्प्राण कठोर।

0: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जिले को विकास और किसान कल्याण की अनेक सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। इन लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। यह पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, डिंडौरी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर सहित अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 देशों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।
2: महिला सभा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त ज्योति आपके साथ। करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, गर्मी की छुट्टियां अब समाप्त हो चुकी हैं, मतलब बच्चों की गर्मी की छुट्टी। पर सखियों, ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी भी छुट्टियां चल रही थी, क्योंकि रूटीन ही कुछ ऐसा होता है कि स्कूल बच्चे जाते हैं पर तैयारी हमारी होती है। सखियों, छुट्टियों में अक्सर ही हम लोग बाहर प्राकृतिक स्थलों पर घूमने जाते हैं, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में हरे भरे वन और बर्फीले स्थान राहत देते हैं, जहां हम सुकून के कुछ दिन बिता सकते हैं। सखियों, चमत्कार शब्द की उत्पत्ति शायद इन्हीं स्थानों से हुई थी, क्योंकि यदि हम इन जगहों पर जाते हैं ना, तो हम खुद महसूस करते हैं कि मन एकदम शांत और प्रसन्न होने लगता है, क्योंकि हम रम जाते हैं तन और मन से अपनी प्रकृति की सुंदरता में। पर सखियों, क्या होगा यदि ये सुंदरता ना रहे, यदि ये वन ये पहाड़ ना रहें? पर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पर्यावरण बचा रहे हैं ना। हर साल हम पर्यावरण के ऊपर वनों, जंगल, वायु, पानी, इन सभी को बचाने के प्रोग्राम करते हैं, भाषण देते हैं, सोशल मीडिया और अन्य मीडिया पर कार्यक्रम करते हैं। पर सखियों, क्या ये सब करना ही काफ़ी होता है? इससे सब बच जाएगा या बच रहा है? जितना हम पर्यावरण और वन रक्षण की बातें करते हैं ना, जागरूकता फैलाते हैं ना, उतना ना तो संरक्षण हो रहा है, ना ही पेड़ पौधे वन बच रहे हैं, बल्कि शायद नष्ट ज़्यादा।

हो रहे हैं, तो हम सभी का जवाब यूजुअली यही होता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या ही है। तो सखियों जवाब ये है कि जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं, हम सभी मिलकर एक ताकत बन सकते हैं, पर शुरुआत अपने आप से ही, बल्कि अपने घर से ही होगी। सबसे पहले अपने घर में या घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं। सिर्फ लगाना ही काम नहीं होता, उनकी देखभाल भी करें। कागज़ का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करें। जहाँ भी उसका अनावश्यक प्रयोग लगे ना, वहाँ उसका विरोध करें, पर विरोध मर्यादित हो। पेड़ों की अनावश्यक कटाई का विरोध करें, क्योंकि सुख सुविधा से पहले हमें जीने के लिए सांसें चाहिए, और सांसों के लिए शुद्ध हवा चाहिए, और शुद्ध हवा के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, जो कि हमें हरे भरे वन ही दे सकते हैं। पर्वतीय और वन स्थलों पर जाकर पॉलीथीन प्लास्टिक का कचरा ना फैलाएं। ये और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जिनसे बेशक हम अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति को बचाने में योगदान दे सकते हैं। इसलिए ये ना कहें कि हम क्या कर सकते हैं। सखियों, हम एक ताकत बनकर, संकल्प लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और सखियों, हमारी धरा सुरक्षित रहे, हमारे वन्य और हमारे जंगल, हमारे पहाड़ सुरक्षित रहे, इसे बचाने की मुहिम को लेकर ही हम मनाते हैं वन महोत्सव सप्ताह, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। और सखियों, इस उत्सव की शुरुआत हुई थी सन 1950 में, उस समय केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा की गई थी। सखियों, सोचिए ना उस चित्रकार की कला के बारे में जिसने इतनी सुंदर प्रकृति को रचा है।

0: सखियों कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। पर सखियों हम ये कहते हैं कि मानवता की सेवा और रक्षा करने के लिए उसने डॉक्टर्स को भी बनाया। सखियों 1 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। इस उपलक्ष में हमने अपने शहर के कुछ डॉक्टर्स के संदेश लिए हैं, तो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं वो संदेश।
1: आप सभी को नमस्कार और डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर दीप्ति बुनकर रेडियोलॉजिस्ट हूँ। जब लोग डॉक्टर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर स्टेथोस्कोप या क्लिनिक की छवि आती है, लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में हमारा काम थोड़ा अलग और बेहद संवेदन

0: संवेदनशील है। हम अक्सर पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं ताकि दूसरों के जीवन में उजाला ला सकें। चाहे रात का कोई भी वक्त हो, एक्सीडेंट का केस हो, स्ट्रोक या कोई गंभीर इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में हमारा रोल सबसे पहले शुरू होता है। जब हर एक सेकंड कीमती होता है तब हमारी त्वरित सीटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट ही सर्जनों और इमरजेंसी डॉक्टरों को सही रास्ता दिखाती है। हम मेडिकल जगत के वो जासूस हैं जो शरीर के भीतर छिपे सच को तुरंत सामने लाते हैं। भले ही हर मरीज से सीधे तौर पर ना मिले, लेकिन आपातकाल की हर घड़ी में और हर सटीक डायग्नोसिस में हमारी प्रतिबद्धता शामिल होती है। आज मुझे अपने सभी चिकित्सकों और 24 घंटे सेवा देने वाले योद्धाओं के साथ खड़े होने पर बेहद गर्व है। मेरे सभी बेहतरीन सहकर्मियों को हैप्पी डॉक्टर्स डे। धन्यवाद।
1: डॉक्टर्स डे पर सभी शहरवासियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर श्वेता सहाय, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के रूप में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। पिछले 20 सालों से इस संस्थान को मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। इस डॉक्टर्स डे पर मैं सभी शहरवासियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि ये शहर हमारा अपना है। इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में हम सबका सहयोग होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना, थूकना इत्यादि, इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि सफाई केवल सफाई कर्मी का कार्य नहीं है, वह हम हर एक नागरिक का कर्तव्य है। पिछले कई सालों से मैं अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में देकर के यह समझ पाई हूँ कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों की कमी नहीं होता है। स्वास्थ्य अर्थात मन एवं तन दोनों में एक प्रफुल्लित होने की का आभास, वही सही स्वास्थ्य होता है। इसीलिए सिर्फ बीमारी की कमी को आप स्वास्थ्य ना समझें, आप ये समझिए कि अपने आप को, अपने शरीर को एक अच्छी कंडीशन में रखना, नियमित व्यायाम करना, स्वच्छ एवं सादा आहार लेना, स्वच्छ और भरपूर पानी पीना, इन सब चीजों में ही असली स्वास्थ्य निहित है। हम इससे कई बीमारियों से बच सकते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से अनेक अनेक स्वास्थ्य कामनाएं। धन्यवाद।
2: मेरा नाम डॉक्टर गौरव भारद्वाज है और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं बचपन में जब छोटा था तो मेरी खुद एक बार सर्जरी हुई थी और उसके बाद मैं बहुत इंस्पायर हुआ डॉक्टर बनने के लिए। मुझे लगा कि डॉक्टर ने मुझे बहुत मदद की मेरे बीमारी से बाहर आने के लिए, और उसके बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूंगा। मुझे बार बार लगता था कि ना शायद मैं डॉक्टर ही बन सकता हूँ और जीवन में और कुछ नहीं बन सकता, और मैंने ये रास्ता पूरा किया। डॉक्टर बनने का सफ़र बहुत ही कठिन रहा, बहुत ही जूझना पड़ा। 10 साल 15 साल लगातार मेहनत, अलग अलग तरह के इम्तिहान, और उसके बाद वो मुकाम मैं हासिल कर पाया। मेरा उद्देश्य था मानवता की सेवा करना और उनको उनकी परेशानियों से मुक्त कराना। मैं काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहा उस रास्ते में, लेकिन मैंने खुद को भी खोजना शुरू किया और अपने बारे में जानना शुरू किया, और मुझे लगा कि मैं जितना अपने बारे में जान पाऊँगा शायद मैं उतनी ही अच्छा सब जनता की सेवा कर पाऊँगा। इस डॉक्टर्स डे पर मैं सभी मेरे डॉक्टर साथियों को और श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और जो लोग भी डॉक्टर बनने की राह में हैं उन सबको शुभकामनाएँ कि वो इस राह में सफल रहें और एक अच्छे डॉक्टर बन के देश की और मानवता की सेवा करें।
3: प्रिय श्रोताओं और सभी डॉक्टर मित्रों को मेरा नमस्कार एवं डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर कृति है, मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। बचपन से ही मेरा सपना डॉक्टर बनने का रहा है। मुझे विज्ञान विषय में विशेष रुचि रही है और मानव शरीर के बारे में जानने की इच्छा ने ही मेरा यह सपना पूरा किया। डॉक्टर बनने के लिए कठिन परिश्रम

0: अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं उन सभी श्रोताओं को संदेश देना चाहूँगी जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं कि यदि हम सच्ची लगन और मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। डॉक्टर केवल एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि मानवता की सेवा का एक महान माध्यम है। मेरी यही इच्छा है कि मैं भविष्य में भी अपना काम ईमानदारी और समर्पण के साथ करती रहूं। डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मैं डॉक्टर अनुराग चौहान गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं जयारोग्य अस्पताल समूह जनरल सर्जरी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पिछले 25 साल से जयारोग्य अस्पताल एवं गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज आप सभी लोगों को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे पर बधाई देता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहता, तो मेरा जवाब है हाँ। मैं हमेशा से ही लोगों की पीड़ा देखकर अपने आप को भी पीड़ित महसूस करता था और मेरे अंदर का एक व्यक्ति हमेशा ये चाहता था कि मैं किसी भी तरीके से लोगों को पीड़ा मुक्त कर सकूं। इस कारण मुझे हमेशा मेरे मन में एक ये लालसा थी कि मैं सफ़ेद कोट पहनूं और लोगों की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। जब भी किसी मरीज को हम लोग देखते हैं कि वो ठीक होता है तो एक अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है और सेटिस्फेक्शन महसूस होता है जो किसी भी और चीज़ से नहीं मिलती। हमेशा ये कहना चाहूँगा चिकित्सा सद डॉक्टरों के प्रति सद्भावना और उनके विश्वास पे चलती है। और आप सभी को भी मैं आज डॉक्टर्स डे पे अपने चिकित्सक साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और हमेशा बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को अब मरीजों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उनके लिए जो बन सकता है हमें करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इसी भावना से मैं हमेशा आगे करता रहूँ। धन्यवाद।
2: नमस्कार, सलाम। मैं डॉक्टर नाजिया खान, आयुर्वेद चिकित्सक और पूर्व चिकित्सा अधिकारी। मैं पिछले 16 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हूं। सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन और आप सभी को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी कष्ट, दुख, तकलीफ में गिरे इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की जो खुशी होती है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे इसी संतुष्टि के एहसास ने इस तरफ आकर्षित किया। हालांकि सफ़र आसान नहीं होता, ये सभी साथी लोग जानते हैं। खासकर छोटे शहर के ऑर्थोडॉक्स एरिया से निकली हुई एक लड़की, घर से बाहर निकलना, अंतहीन दिन और रातें, भारी भरकम किताबें, कड़ा अनुशासन और बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, वो इस सफ़र का हिस्सा हैं। लेकिन जब पहली बार हम वो वाइट एप्रन पहनते हैं ना, उस एक पल में जो गर्व और जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो सब कुछ बदल देता है। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरत से विकार प्रशमन उसके बाद आता है। मतलब पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, वो बीमार पड़े ही ना, बीमारी को दूर करना उसके बाद की बात है। और जिस सेवा भावना के उद्देश्य से मैं क्षेत्र में आई थी, वो हर दिन तब पूरा होता है जब कोई मरीज ठीक होकर मुस्कुराते हुए घर जाता है। हालांकि हर तबके तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना मेरा उद्देश्य है और उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक ज़िंदगी कम है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर को सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि एम्पैथेटिक भी होना ज़रूरी है। उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, कम से कम सुने वो। सुनना हमारे पेशे में, हमारे फील्ड में बहुत ज़रूरी गुण है और पेशेंट के प्रति सहानुभूति बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं यही कहूँगी कि आखिरी में सबसे मेरा यही संदेश है कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।
3: नमस्कार ग्वालियर, मैं डॉक्टर नीतू प्रसाद, आयुर्वेदिक चिकित्सक। डॉक्टर डे के अवसर पर आकाशवाणी के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर डे हम सभी बंगाल के डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने अपना पूरा जीवन स्वास्थ्य सेवा में लगा दिया। उनके जीवन का लक्ष्य ही यही था कि सभी स्वस्थ रहें और ईश्वर ने इस विशिष्ट सेवा के लिए ही हम सभी डॉक्टर्स को बनाया है। स्वस्थ से स्वास्थ्य

0: रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अस्वस्थ व्यक्ति के विकारों का को दूर करना ही चिकित्सा है। हम अपने वर्क प्लेस पर यही प्रार्थना करते हैं रोज कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। कहा भी जाता है कि निरोगी काया ही जीवन में सबसे बड़ा सुख है, तो हम सभी आज इस अवसर पर ये प्रण लें कि हम अपना और अपनों का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। अपने हेल्थ चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं, इससे हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, फिर भी हमें कुछ और होने वाली बीमारियां या किसी और कमी के बारे में पता लगता है तो हम उसका निराकरण कर पाते हैं। कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पुनः आप सभी को डॉक्टर डे की शुभकामनाएं देती हूं। थैंक यू।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स डे के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और विश्वास का माध्यम है। एक डॉक्टर का उद्देश्य केवल रोग का उपचार करना ही नहीं बल्कि रोगी को आश्वस्त करना, उसे सही दिशा देना और उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी है। मैं रेडियोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। चिकित्सा विज्ञान में अक्सर कहा जाता है कि सही उपचार की शुरुआत सही निदान से होती है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक तकनीकों ने रोगों की पहचान को अधिक सटीक और शीघ्र बनाया है, जिससे अनेक गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाना संभव हुआ है। आज का चिकित्सा तंत्र एक टीम वर्क है जिसमें चिकित्सक, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मी मिलकर रोगी की सेवा करते हैं। हम सभी का लक्ष्य एक ही है, रोगी को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन प्रदान करना। डॉक्टर्स डे हमें महान चिकित्सक भारत रत्न डॉक्टर बीसी राय के योगदान की भी याद दिलाता है, जिन्होंने चिकित्सा सेवा को मानवता की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम माना। आइए इस अवसर पर हम सभी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और चिकित्सा कर्मियों के प्रति सम्मान एवं विश्वास बनाए रखने का संकल्प लें। आप सभी को डॉक्टर्स डे की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी चिकित्सा दिवस पर डॉक्टर से प्राप्त संदेश। सखियों, चुनौतियों की यदि बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये दौर चुनौतियों का दौर कहला सकता है। कहते हैं ना कि ये वक्त है बदलाव का, विकास का। तो सखियों, जब हम बदलाव में विकासशीलता से विकसित अवस्था में प्रवेश करते हैं तो समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। और सखियों, मुझे लगता है कि इस समय बड़ी बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है पेरेंटिंग की। सखियों, यदि पहले के समय की बात की जाए तो कम साधन में 3-4 बच्चे पल जाते थे। खुद हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि हमने तो इतने इतने बच्चे पाल लिए, तुम लोग एक या दो बच्चों को पालने में परेशान हो रहे हो। सखियों, सच भी है, हम लोग हर रोज़ एक नए पेरेंटिंग के चैलेंज को लेकर चलते हैं। सखियों, वर्तमान में बच्चों की परवरिश आसान की जगह चुनौतीपूर्ण बन गई है और इसकी कोई एक वजह देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है परिवारों का बिखरना। सखियों, आज के समय में करियर और नौकरी के लिए अक्सर बच्चे अपना घर छोड़कर दूसरे शहर और दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, मतलब परिवार और समाज से दूर, बस काम करते हैं और रिश्तों के नाम पर सिर्फ दोस्त होते हैं। तो सखियों, ऐसे में तो बच्चों के पालन पोषण पर फर्क पड़ता ही है। एक भरे परिवार में बच्चा जो अपने दादा दादी, बुआ चाचा, नाना नानी, मामा मौसी से सीखता है, वो रिश्तों को जानता है, वो समझता है, वो इतने रिश्तों में पलकर बड़ा होता है कि फिर वो और लोगों को देखकर हिचकता नहीं है। उसे सबके साथ में रहना आता है, उसे सामाजिकता आती है, उसे शेयर करना आता है। पर सखियों, अकेले पल रहे बच्चों को ये रिश्ते समझ नहीं आते, इसलिए क्योंकि परिवार में वो कुछ समय के लिए ही मेहमान बनकर आते हैं, वार त्यौहार या किसी कार्यक्रम में। ऐसे में बच्चा बाहरी दुनिया से खुलकर तालमेल नहीं बना पाता। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है भाई, मम्मी पापा बच्चे सभी मोबाइल में व्यस्त हैं, कम समय मिलता है, और बच्चों को तो इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल जाते हैं तो वो उसमें व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन इतना कम हो जाता है पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में कि बच्चों की एक अलग दुनिया बनती जाती है। ऐसे में

बच्चे के अभिभावक सोचते हैं कि हम क्या करें, हम बच्चों के पेरेंट्स बने या बच्चों के दोस्त बने। ऐसे समय में बच्चों और माता पिता के बीच जब बातचीत नहीं हो पाती तो दूरियां बन जाती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती होती है बच्चों की परवरिश की, जिसे हमें ही पार पाना है। अपने रूटीन वर्क और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के समय को मैनेज करके, बच्चों के दोस्त बनकर और समय पड़ने पर उनके माता पिता बनकर भी सभी कुछ बैलेंस करके चलना होगा, तभी तो हम बेहतर पेरेंटिंग की मिसाल बन पाएंगे।

0: सखियों, हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो या हम कहीं घूमने जाएं, यात्रा पर जाएं या फिर हम शॉपिंग पर जाएं, पर इन सभी में सखियों सफलता तभी मिलती है जब हम इनकी प्लानिंग करते हैं और उसका बजट बनाते हैं। क्योंकि बिना बजट बनाए शॉपिंग करना या यात्रा करना या कोई कार्यक्रम करना, इसका पूरा मज़ा ही ख़राब हो जाता है। क्योंकि यदि हम पहले बजट बना लेते हैं ना सखियों, तो हमें पता रहता है कि कहाँ पर कितना खर्च करना है और इससे हमारा पैसा अनावश्यक खर्च नहीं होता और हमारी बचत भी हो जाती है और हम आर्थिक तनाव से बच जाते हैं। इसलिए सखियों, जब भी कहीं घूमने जाएं या कोई कार्यक्रम हो या आप शॉपिंग के लिए जाएं, तो बजट ज़रूर बना कर जाएं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपकी यात्रा सुखद हो, आपके कार्यक्रम भी खुशी खुशी संपन्न हो और आपकी शॉपिंग का मज़ा भी दुगना हो जाए। सखियों, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि अपनी सखी ज्योति को दें अनुमति कार्यक्रम महिला सभा संपन्न करने की। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं देवकी नंद केवट के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है। पहले आप सुनेंगे दादरा और उसके बाद लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे देवकी नंद केवट के स्वर में कुछ लोकगीत। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार स्वाति पराशर, इनके स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे ग्वालियर केंद्र का योगदान है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे स्वाति बाराशर के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत प्यासा सावन फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की हैं। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब हम आपको सुनवाते हैं चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत, आवाजें यशुदास और हेमंती शुक्ला की हैं, बोल इंदु जैन के और धुन राजकमल की।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकारी सहायता पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे 494 करोड़ रुपए लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कोदो कुटकी उत्पादक करीब 4 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की जाएगी। किसानों को ये राशि 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी जा रही है। महोत्सव स्थल पर कृषि यंत्रों, मिलेट्स उत्पादों और स्व सहायता समूहों के उत्पादों की विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2,93,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। पिछले वर्ष की तुलना के प्रवेश में 42.03% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 3 महत्वपूर्ण दिवसों पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर कहा कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के निर्माण में इनकी अहम भूमिका है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के समर्पण को असंख्य परिवारों के लिए आशा और नवजीवन का आधार बताया। वहीं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पर उन्होंने कहा कि डाक कर्मचारियों की कर्मनिष्ठा ने डाक व्यवस्था को जनता के विश्वास का सशक्त माध्यम बनाया है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जम्मू में तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण और RFID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी।

0: बात मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देवास, हरदा, बैतूल, पांडुर्णा और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब बात खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का साया है। करीब 80% बारिश की संभावना जताई गई है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर की टीम जीत के साथ नई शुरुआत करेगी। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर भी चर्चा तेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने जिले के समस्त रेत खदानों में मानसून अवधि के दौरान खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आगरमालवा के अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर एक दूध डेयरी संचालक पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। और लोक निर्माण विभाग मंत्री और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल 100 दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी से लगातार चलने वाला जन अभियान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष

0: जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया।

0: वे एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच

गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, मौसम बदल रहा है, कहीं बादलों की आवाजाही है, कहीं बारिश का इंतजार, तो कहीं रिमझिम सी फुहार। ऐसे सुहाने से मौसम में आपकी कुछ चिट्ठियां चलकर हम तक पहुंची हैं और जिनमें लिखे हैं आपके फरमाइशी गीत, ये गीत हम पहुंचाएंगे आप तक। ये खत है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट का। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। और पिंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सबने सुनना चाहा है कुदरत फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की है। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

फिर वही दिल लाया हूं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने इस फिल्म से लिया है। गायिका हैं आशा भोसले, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। फरमाइश आप सबकी है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव और संदीप पाटिल। शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को पसंद करते हैं। मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता और नितिन, साथ में है वंशिका दिवाकर। मोटक्का माफी जिला खंडवा से इसी गीत को सुनना चाहा है जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु 5 जुलाई रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और दूसरा नंबर है 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड 0755। दिन और समय एक बार फिर सुन लें, 5 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। सूचना समाप्त हुई और अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। हिमालय की गोद में, ये फिल्म का नाम है, आवाज लता मंगेशकर की है, शब्द रचना इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अनुरोध आप सबका है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, दुर्गापारा, संतोषी नगर, रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, भिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य, सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से इसी गीत को पसंद करते हैं, योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारती, भैरव प्रताप सिंह भारती, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई, दुर्गा और अमिता भारती।

हरियाणी और रास्ता इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। पसंद आप सबकी है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु 5 जुलाई रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 077 0755, दूसरा नंबर 2660902। दिन और समय एक बार फिर सुन लें, 5 जुलाई दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और 2660902, भोपाल का एसटीडी कोड 0755। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है द ट्रेन, आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी वर्मन का है। पसंद आप सबकी है। प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। और सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता, भावना और प्राची नीमा।

ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी जिले में राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे 494 करोड़ रुपए लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन

0: जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालाघाट और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5-7 रात 10 बजे से शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का साया है, करीब 80% बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत युवावाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम

रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में, चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। आप सुनेंगे रात 9:30 पर, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। केकड़ा ये नाटक आप सुनेंगे रात 10 बजे, प्रस्तुतकर्ता दानिश इकबाल। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे अमित मलिक का वॉयलिन वादन राग जोग। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा के साथ की गई भेंटवार्ता, जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हुए हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए देवकी नंद केवट के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है। पहले आप सुनेंगे दादरा और उसके बाद लोक भजन।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। ये आकाशवाणी भोपाल है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं। गायिका हैं स्वाति पाराशर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे स्वाति पाराशर के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हेमलता की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से।

मेरे हमदम मेरे दोस्त कार्यक्रम का अगला गीत हमने इस फिल्म से लिया है। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की हैं।

0: श्रोताओं, फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के 11 वर्ष पूरा होने पर इसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव, कोदो कुटकी बोनस वितरण और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया।

0: और डिंडोरी में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है।

समीर का लिखा यह गीत है, जतिन ललित का संगीत, फिल्म का नाम है गुलाम, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, संग्रहालय से कार्यक्रम में लीजिए सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं कड़ी।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और जाकर समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस आई तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर सम्राट ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप कर स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा, सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट के दिए अलग महल में रह रही भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजय श्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। भुवन मोहिनी की हत्या की कोशिश करने के अपराध में विजय श्रवा ने उन दोनों को दीवार में चुनवा दिया। सम्राट ने एक दिन भुवन मोहिनी को बुलवाया और चंद्रहासिनी के पिता और इंद्रप्रस्थ महाराज आदित्य सेन की शर्त को बताया। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 13वीं और अंतिम कड़ी में।

0: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
1: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
0: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
1: टाला जा सकता है।
0: कैसे?
1: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।

0: मैं सहर्ष अपना शीश देने को तत्पर हूँ।
1: इसका अर्थ है कि मैं भी अपने जीवन से हाथ धो लूं?
0: नहीं सम्राट, यदि देश दासत्व की श्रृंखला से जकड़ा गया तो भावी संतान अपने पूर्व पुरुषों पर हंसेगी। इतिहास के पन्ने साक्षी होंगे उस अधा पतन के जिसका हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। सम्राट, क्या भविष्य में भारतीय संतानें सम्राटों के नाम पर घृणा और तिरस्कार की वर्षा न करेंगे, जब वे इतिहास के पृष्ठों में अतीत के संस्मरणों पर एक दृष्टि डालेंगे तो उन्हें विलासी सम्राटों की काली करतूतों के प्रति घोर विरक्ति नहीं होगी? भावी संतानें न कहेंगी कि इंद्रिय लोलुप शासकों ने सुरा और सुंदरी की उपासना में भारतीय वीरता को कलंकित किया है? इससे तो कहीं अच्छा है कि आज का सम्राट अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करे। जो सम्राट अपनी साम्राज्ञी को भयानक दंड दे सकता है, वो राष्ट्र में एक नर्तकी के मुंह में पड़कर निरपराध प्राणियों की हत्या द्वारा रक्त वैतरणी में क्यों निमग्न होना चाहता है? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि युद्ध के आमंत्रण को स्वीकार करने से कहीं अधिक श्रेयस्कर ये है कि महाराज आदित्य सिंह को सूचना भेज दी जाए कि शीघ्र ही उनकी सेवा में भुवन मोहिनी का शीश भेजा जाएगा।
1: नहीं भुवन मोहिनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
0: सम्राट, आपको स्मरण होगा कि इंद्रप्रस्थ के आश्रम में आपने मुझे दो पुरस्कार देने की बात कही थी। एक पुरस्कार तो मैंने ले लिया था, परंतु दूसरा पुरस्कार?
1: मुझे स्मरण है भुवन मोहिनी।
0: तो आज दूसरा पुरस्कार देने का समय आ गया है मेरे प्राण प्रिय, मुझे मृत्युदान दीजिए। मैं नहीं देख सकती कि एक गलित और पतित नर्तकी के जीवन का मोह आपको कर्तव्य कर्म से विलग करता जा रहा है। सत्य ये है कि एक सम्राट के दृष्टि में समस्त शासित प्रजा एक समान है। यदि मेरे तुच्छ शरीर का मोह राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बना तो आपके पवित्र और राष्ट्राभिमानी चरित्र पर कलंक लग जाएगा। एक ओर धर्मपत्नी का न्याय के नाम पर क्रूरता पूर्वक विनाश और दूसरी ओर एक नर्तकी की आसक्ति के कारण राष्ट्र का सर्वनाश। प्रियतम, मैं तुम्हारे चरणों में गिरती हूं। मैं इस जीवन में तुम्हारी बनकर भी अपवित्रतावश तुम्हें स्पर्श करने तक से हिचकती रही हूं। मेरी शून्य छाया तुम्हारे उदास जीवन और चरित्र के लिए मुझे महान कलंक के समान रही है। यदि जनता के सामने अपनी तलवार से मेरा शीश काट कर महाराज आदित्य सेन के समीप भिजवा सके तो इससे अधिक निश्चल चरित्र इतिहास के पन्नों में ढूंढने पर भी मिल सकेगा, मुझे संदेह है।
1: इसका अर्थ है कि मैं अपना हृदय पिंड निकाल कर फेंक दूं, अपने जीवन की अकेली वासना जिसके सहारे मैं आज तक जीता रहा हूं, आज कुचल कर देहाभिमान और आसक्ति से विरक्त हो जाऊं और अपने हाथों अपने मृत्यु की आज्ञा प्रदान करूं? जिन आशाओं के तिनके चुनकर मैंने अपने प्राण पखेरु के बसने के लिए स्नेह का नीड़ बसाया था, उसे न्याय की निष्ठुर दीप शिखा द्वारा छुलसा दूं, भस्म कर दूं?
0: सम्राट, यदि मेरी सर्वनाश से राष्ट्रव्यापी महासमर की अग्नि प्रज्वलित होने के पूर्व ही बुझाई जा सकती हो तो भुवन मोहिनी का शीश धड़ से विलग होने को प्रस्तुत है। महाराज आदित्य सेन की तुष्टि के लिए आपको मेरी मृत्यु का आदेश देना ही होगा।
1: और इसके साथ ही मुझे स्वयं के लिए अपनी चिता को अपने हाथों प्रज्वलित भी रखना होगा। प्रिय, विधि विधान के क्रूर निर्णय को स्वीकार करने से पूर्व एक बार जीवन की महान अतृप्ति की तुष्टि के लिए मृग जल का सहारा ही मिलता, क्या ऐसा संभव नहीं था?
0: संभव था प्रिय, किंतु इससे सम्राट के जीवन की महत्ता धूल में मिल जाती। इसलिए यदि

0: जन्मांतर सत्य है। यदि वासना का अस्तित्व जीव को पुनर्जन्म के लिए बाध्य करता है तो इस जीवन में नहीं। सम्राट, फिर कभी हमारा मिलन तो होगा ही, तभी जन्म जन्मांतर के वासना की तुष्टि के क्षण उपस्थित होंगे और मिलन की आशा की शुभ घड़ियां अंतिम मुक्ति की वरदायिनी सिद्ध होंगी।
1: यदि मैं आज सम्राट न होता तो कितना अच्छा होता। आह, इस महत्ता ने मुझे साधारण मनुष्य के जीवन से भी वंचित कर दिया। जीवन का प्रत्येक क्षण अभिशापित, उत्तप्त और प्रेम के अभाव में बीत गया। सम्राट बनकर भी अपनी आकांक्षाओं को तुष्टि के जल से शीतल न कर सका और मिलन की छलना ने चिर वियोग के सम्मुख ला खड़ा कर दिया। अच्छा प्रिय, हमने जाने अनजाने जिस वृक्ष को पाला पोसा था, स्नेह का जल पिलाकर जिस तरह उसे पल्लवित और कुसुमित किया था, उसी वृक्ष को फल प्राप्त करने से पूर्व ही जड़ से काट कर नष्ट कर देने का पवित्र कर्तव्य मैं करूंगा। तुम मुझे सम्राट बनाकर साधारण मनुष्य नहीं रहने देना चाहती। भले ही उभय प्राणियों का जीवन मृत्यु की नीरव गोद में धराशायी हो जाए, मुझे स्वीकार है। आज उस मोहमयी मदिरा के प्रभाव का अंतिम क्षण महान जागरण का संदेश लेकर आया है। स्वागत है उस क्षण का। हम दोनों हृदय के सन्निकट रहकर भी एक दूसरे के न हो पाए, अब एक दूसरे के अंत का कारण बनेंगे। दुनिया की दृष्टि से ओझल होकर महान मिलन सागर में विलीन हो जाएंगे। जाओ, मेरे जीवन के स्नेह की प्रतिमा, आज तक मैं तुम्हारे रक्षक होने का अभिमान हृदय में भरता आया था, किंतु ये क्षण स्नेह के अंतिम मिलन के अंतिम क्षण है। अब तुम्हारा ये रक्षक विजयश्रवा तुम्हारे जीवन के भक्षक के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा।
0: आपके चरणों को प्रणाम प्रियतम। जीवन भर के संचित अपराधों की क्षमा याचना का ये क्षण मूल्यवान है। इस पाप संताप में जीवन को मैं स्वयं जीवित रखने में असमर्थ हो चुकी थी, इसलिए मेरे शीश को अपनी तलवार के झटके से काटना। मैंने सब कुछ पा लिया प्रीतम, प्यार का प्रतिदान। विदा।
1: ठहरो प्रिय, तुम जानती हो वीर की तलवार एक नारी की गर्दन में शोभा नहीं देती। दूसरे, नारी हत्या जघन्य अपराध है।
0: सब कुछ है मेरी प्रीतम, किंतु अंतिम लालसा फिर भी बची है। मैं चाहती हूं कि पाप पुण्य के द्वंद से उठकर मेरे प्रियतम स्वयं मेरी गर्दन पर वार करें, ताकि मेरा लाल लहू प्रियतम के चरणों पर गिरे और मेरा अपवित्र जीवन पवित्र हो जाए। अब अंतिम बार मुझे निराश न करना मेरे देवता।
1: अच्छा प्रिय, तुम्हारे अंतिम आग्रह को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा।

0: महामंत्री।
1: आज्ञा सम्राट।
0: हमने ये दो पत्र तैयार करवा दिए हैं। प्रथम उत्तराधिकार पत्र है, जिसके अनुसार मेरा 5 वर्षीय राजकुमार अखिल भारत का सम्राट।

0: और द्वितीय पत्र महाराज आदित्य सेन के लिए है, जिसमें उनके प्रतिशोध पूर्ण भावना की पूर्ति का अंतिम आश्वासन भुवन मोहिनी का शीश भेजने का समाचार है। महामंत्री, कल प्रभात काल के पश्चात एक जनसाधारण और सामूहिक जनता की सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें महाराज आदित्य सेन के वैर विग्रह पूर्ण पत्र के आधार पर धारा नगरी के सम्राट की ओर से दोनों राज परिवार के बीच स्नेह संबंध स्थापित रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा और महाराज आदित्य सेन की आंतरिक तुष्टि के लिए भुवन मोहिनी का रक्त से लथपथ शीश। आज तक मैंने गद्दी की सेवा निश्चल और न्यायपूर्ण हृदय से की है, किंतु अब मेरा मनुष्यत्व मुझसे विदा ले रहा है और उसके स्थान पर एक ऐसी निष्क्रियता प्रवेश कर रही है जो श्वासों के बचते हुए तार को किसी भी क्षण निश्चेष्ट कर देगी। इस राज सिंहासन को प्रणाम करता हूं, जिसके प्रति मेरे पूर्वज सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और व्रती रहे हैं। मैंने इस परंपरा को स्थापित रखने का मात्र अकिंचन प्रयास किया है।
1: धारा नगरी के सम्मानीय नागरिकगण, आज इस अति विशेष जनसभा में स्वयं सम्राट विजयश्रवा उपस्थित हैं और उपस्थित हैं देवी भुवन मोहिनी। आपको ज्ञात है कि देवी भुवन मोहिनी की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में सम्राट ने अपनी पत्नी चंद्रहासिनी और उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला को मृत्युदंड दिया था। इससे कुपित होकर चंद्रहासिनी देवी के पिता इंद्रप्रस्थ नरेश महाराज आदित्य सेन ने हमारे राज पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी है। महाराज आदित्य सेन ने चेतावनी दी है कि या तो सम्राट विजयश्रवा देवी भुवन मोहिनी का विच्छेदित शीश भिजवाएं या फिर उनका आक्रमण सहने के लिए तैयार रहें। प्रिय नागरिकों, हमारे जनप्रिय सम्राट विजयश्रवा इंद्रप्रस्थ नरेश की इस चेतावनी से चिंतित हो गए कि यदि भारत के इन दो शक्तिशाली राज्यों में आपस में युद्ध हुआ तो इसका लाभ हूण अवश्य उठाएंगे। इसीलिए हमारे सम्राट युद्ध को टालना चाहते थे, परंतु इसके पहले कि वो कोई निर्णय लेते, देवी भुवन मोहिनी ने स्वयं अपने आप को आत्मबलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया है। देवी भुवन मोहिनी लगातार राष्ट्रहित में अपने आप को समर्पित करती आई हैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भुवन मोहिनी को मत मारिए सम्राट।
3: हम भुवन मोहिनी का बलिदान नहीं चाहते।
4: ये बलिदान नहीं होना चाहिए।
3: हाँ, ये बलिदान नहीं होना चाहिए। मत मारिए महाराज, मत मारिए।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, आप जो कह रहे हैं हम भी वही चाहते। ऐसा करते समय हमारी आत्मा फट रही है, हमारा हृदय चीत्कार कर रहा है, परंतु हम विवश हैं। हमारे और देवी भुवन मोहिनी के बीच क्या संबंध है आप भली भांति जानते हैं। यथार्थ है कि राज परिवार की प्रतिष्ठा और राष्ट्र के व्यापक हित में हमने सदैव भुवन मोहिनी को दुखी दिए हैं, सुख कभी नहीं। देवी भुवन मोहिनी ने भी कभी सुख के बारे में नहीं सोचा। कभी नारी मर्यादा तो कभी राज परिवार की मर्यादा, इन मर्यादाओं के व्यवहार में उन्होंने सदा अपने आप को व्यय ही किया है, अर्जित कुछ नहीं किया। देवी भुवन मोहिनी आज भी चाहें, अब भी चाहें तो मुझसे लिए गए वचन से मुझे मुक्त कर सकती है। हम कैसे भी सही भावी परिस्थितियों से निपटने में जुट जाएंगे, अपने राष्ट्र की एकजुटता को बनाए रखेंगे।

0: भुवन मोहिनी, एक बार फिर से मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे द्वारा दिए गए वचन से मुझे मुक्त करो।
1: नहीं सम्राट, मैं स्थित प्रज्ञ हूं और आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी रहिए। मुझे गर्व है कि मेरे रक्त का प्रत्येक बिंदु हिंसा के अपार सागर को रोक पाने में समर्थ हो रहा है। पूज्य सम्राट, मेरे जीवन के समस्त अपराधों को क्षमा करें और अपनी तीक्ष्ण कटार से मेरा पतित शीश काट कर मुझे गौरवपूर्ण मृत्यु का दान दें।
0: आज मैं ये क्या करने चला हूं? मेरे हाथ में ये कटार और मेरे समक्ष अपना शीश कटाने के लिए अवनत तुम भुवन मोहिनी, एक ही पल में क्या से क्या हो जाएगा? तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी जिह्वा, सब कुछ शांत हो जाएगा।
1: मेरे स्वामी, परीक्षा की गहनतम घड़ी में आपका विचलन शोभा नहीं देता। आपकी दुर्बलता कहीं मुझे लज्जित न कर दे। मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहती। वार करिए मेरे प्रभु, वार करिए।
0: जिस शरीर को मैंने अपने हृदय से भी बढ़कर प्यार किया, आज उसी के विनाश का कठोर दायित्व निभाने की शक्ति दो ईश्वर। भुवन मोहिनी,

0: महामंत्री, पूर्व निश्चित सैनिकों को आदेश दीजिए कि इसी क्षण भुवन मोहिनी का मुंड रुंड लेकर महाराज आदित्य सेन की सेवाओं में उपस्थित हों।
1: आज्ञा सम्राट।

आज मेरी प्रियतमा नश्वर जीवन से सदा के लिए विदा ले चुकी है। अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं बचा। एक मानव सम्राट बनकर कर्तव्य के लिए मुझे जिस तरह निर्मम बनना पड़ा, मानो मेरा मनुष्यत्व सदा सदा के लिए छिन गया हो। संज्ञा शून्य, भावनाहीन और ये नीरस जीवन लेकर मैं करूंगा ही क्या? मेरे अटके हुए ममता के धागे तो उसी समय टूट गए थे जब मेरी तलवार भुवन मोहिनी की गर्दन पर वार करने के लिए उठी थी।

जीवित भुवन मोहिनी की आवश्यकता तो जीवित विजय श्रवा के लिए थी। जब भुवन मोहिनी ही नहीं रही तब विजय श्रवा ही क्यों जीवित रहे। आह, भुवन मोहिनी के बिना पंख विहीन पक्षी की भांति हो गया हूं मैं। अब भुवन मोहिनी का चित्र मात्र एक वस्तु है जिसे मेरी आंखें स्वीकार कर सकती हैं। जब तक सांसों की डोर बनी है भुवन मोहिनी मेरी आंखों के सामने तुम ही रहोगी, मात्र तुम। जैसे तुम निष्प्राण कठोर प्रस्तर, वैसा ही मैं भी हो रहा हूं, निष्प्राण कठोर।

नमस्कार, मीडियम वेव 188.3 दो मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी संध्याकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि इस पहल ने गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से हो रहा है। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। श्री शाह ने नई दिल्ली में समिति के साथ हुई बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रिया ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सत्र 2026-27 में अब तक 5,48,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। और मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी की खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में। ऑल इंडिया रेडियो का वो प्रोग्राम जो मेरे और आप जैसे नौजवानों के लिए बना है। मैं आपकी दोस्त तेजस्वी आज आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ, क्योंकि हम बात करेंगे दो ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में जो मिलकर इंडिया का फ्यूचर बदल रहे हैं। पहला सबसे बड़ा एस्पेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की दुनिया में AI सिर्फ एक बजवर्ड नहीं रह गया है, ये कुछ सालों पहले तक की डेटा साइंस की ब्रांच को तोड़कर 10 कदम आगे निकलकर एक रिवॉल्यूशन में तब्दील हो चुका है। हम अपनी आंखों के सामने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चालू होता देख रहे हैं। हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह AI भी कई जॉब्स खत्म कर रहा है, मार्केट रिक्वायरमेंट बदल रहा है और नई स्किल्स की डिमांड कर रहा है। तो अब युवा पीढ़ी के लिए ये सवाल उठता है कि क्या AI हमारा दोस्त है या दुश्मन। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी। बात चाहे चंद्रयान 3 के मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की हो या चंद्रयान 2 के सबस्ट्रेट सरफेस में पानी की खोज करने की हो, इंडिया ने स्पेस टेक में अपनी छाप छोड़ना चालू कर दी है और अपने अगले वीनस मिशन शुक्रयान के साथ इसे और आगे ले जाने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज के इस अपने कार्यक्रम में हम इन डुअल एस्पेक्ट्स के संगम को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

पहले बात करते हैं एआई की, जो अभी हमारी जनरेशन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जिस डिग्री या जॉब की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगले 10 साल में रहेगी भी कि नहीं, दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या एआई मेरी नौकरी ले लेगा। हाल ही में नितिन सेठ, जो एक ई कॉमर्स कंपनी के फॉर्मर COO हैं, उनका USA में एक इवेंट का एक्सपीरियंस पढ़ रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को में पहली बार सेल्फ ड्राइविंग कार्स की सवारी करने का मौका मिला, और जिस प्रिसीजन और ईज के साथ उन गाड़ियों ने ट्रैफिक और कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन नेविगेट किए, वो ये देखकर अचंभित रह गए। वो कहते हैं कि बिना ड्राइवर की गाड़ी चलते रहना देखकर उन्हें शुरुआत में अटपटा जरूर लगा, पर बहुत जल्द उस चीज की आदत लग गई और वो उस गाड़ी पर 100% ट्रस्ट के साथ सवारी का मजा लेने लगे। पर जब वो इस इवेंट से अपनी रेंटल कैब में लौट रहे थे तो उन्होंने अपना अनुभव अपने कैब ड्राइवर के साथ शेयर किया, पर कैब ड्राइवर ने नितिन सेठ का एंथुजियाज्म साझा नहीं किया। और वो करे भी क्यों, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स उसकी नौकरी पर सीधा वार है। उस ड्राइवर को ये डर था कि 2 साल बाद तक सेल्फ ड्राइविंग कार्स उसकी नौकरी खत्म कर देगी और उसे अपने देश वापस लौट जाना पड़ेगा। AI अब केवल मानवीय क्षमताओं को मिमिक नहीं कर रहा है, ये उस गति से विकसित हो रहा है जहां उन क्षेत्रों में हमसे बेहतर प्रदर्शन करने लगा है जिन्हें कभी ह्यूमन यूनिकनेस का शिखर माना जाता था। क्रिएटिविटी से लेके इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग तक, AI उन सीमाओं को पार कर रहा है जिन्हें हमें कभी अटूट माना करते थे। मानवीय दृष्टिकोण से AI हमारे ह्यूमन एज को चैलेंज कर रहा है। जिन स्किल्स को हम अपनी यूनिक स्ट्रेंथ मानते थे, अब वो हमें अपर हैंड दिलाने में नाकाम साबित हो रही हैं। AI रिवॉल्यूशन पिछले हुए 3 रिवॉल्यूशन से इसलिए भी अलग है क्योंकि अब तक के हर एक रिवॉल्यूशन ने ब्लू कॉलर जॉब्स को डिस्प्लेस किया, पर ये पहला ऐसा रिवॉल्यूशन है जो नॉलेज वर्कर्स या व्हाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस करेगा। ह्यूमन एज इन द AI एज बुक के अनुसार अनुमानित रूप से 2040 तक 80% व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो जाएंगी। उसकी जगह प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, AI एथिक्स एंड कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, ह्यूमन AI इंटरैक्शन डिजाइनर जैसे रोल सामने आएंगे। ये चेंज अचानक से ना होके ग्रेजुअल होगा और इस चेंज की शुरुआत हम अपनी आंखों देखी देख ही रहे हैं। इस AI एज में युवा अपने करियर को कैसे नेविगेट करें, आइए जानते हैं इस गीत के बाद। You said it to me.

It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. ऐसा कहना था चार्ल्स डार्विन का, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का इजाद किया. बदलाव को अपनाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों से दूर नहीं जाना चाहते जो आरामदायक और फेमिलियर महसूस होती हैं. लेकिन असली सफलता माइंडसेट शिफ्ट के साथ आती है. यह तब होता है जब हम बदलाव को स्वीकार करना और उसे पूरी तरह अपनाना शुरू करते हैं. जब भी आपके करियर में रुकाव आता दिखे, तो अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा और निरंतर बढ़ाते रहना होगा, जिससे हम इस एआई की एज में एआई से पीछे ना रह जाएं. ये समय है जॉब क्रिएशन का, एंटरप्रेन्योर्स का, जो एआई के माध्यम से नए ब्रेकथ्रूज कर सकें. ये समय है अपनी ह्यूमन रूट्स पर जाने का, अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और इंस्टीट्यूशन को जगाने का. जैसे कि मानव जाति ने आग की खोज करके खाना बनाना और सेटलमेंट्स बसाना शुरू किया, बस वैसे ही हमें इन एआई टूल्स का उपयोग करके अपना भविष्य बनाना शुरू करना होगा. आज हमारे सामने जो प्रश्न है, वो महाभारत में अर्जुन की दुविधा के समान है. इस बदलते भविष्य में मेरी क्या भूमिका है? क्या मैं ऐसी दुनिया में रेलेवेंट रह सकता हूँ जहाँ मशीनें मुझसे तेजी से सीखती हैं? क्या होगा यदि मेरी स्किल्स या मेरा सेंस ऑफ सेल्फ भी अप्रासंगिक हो जाए? संकट के उस क्षण में कृष्ण ने अर्जुन के साथ भगवद गीता का अद्भुत ज्ञान साझा किया, जो सिर्फ एक फिलोसॉफिकल उपदेश नहीं, बल्कि किसी कार्य को क्लैरिटी, करेज और इनर अलाइनमेंट के साथ कैसे करें, इसकी रूपरेखा भी है. कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू हैव द राइट टू एक्शन बट नॉट टू इट्स फ्रूट. इसी के साथ इस विषय को मैं देती हूँ विराम. बातें और भी होंगी, पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं युवा कवि कृष्णा शर्मा. आइए हम उनसे सुनते हैं उनकी

0: कुछ कविताएं।
1: इश्क न पैदा होता है और ना ही मरता है, बस समय के साथ अपना रूप बदलता है। कभी मोहब्बत, कभी इबादत, तो कभी शहादत कहलाता है। उसी के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक ही है इश्क। वीणा का पावन राग इश्क, पानी में जलती आग इश्क, वन का राजन वह बाघ इश्क, फूलों से सजता बाग इश्क। तुम प्रेम उसे क्यों कहते हो जिस मिथ्या में तुम रहते हो, स्थिर होने की नाट्य प्रस्तुति कर गंगा से बहते हो। क्या कभी चांद को देखा है जो सूर्य स्पर्श की आशा है, जिसे कहते तुम भाव मात्र वह स्वयं प्रभु की भाषा है। स्वर से सजता वह गीत कोई, मानो जन्मों की रीत कोई, जिससे ना हो भयभीत कोई, हर हार में हो एक जीत कोई। मीरा के मन में कृष्ण रहे, फिर और कहां कोई प्रश्न रहे, जब प्रथम पृष्ठ पर प्रेम नाम, क्यों फिर कोई भी कष्ट रहे। राधा ने राह बनाई तो बस कृष्ण कृष्ण, बस कृष्ण कृष्ण ही नाम लिया, पर कृष्ण का मार्ग स्वयं राधा, सृष्टि ने भी यह जान लिया। ऋतु की पहली वर्षा से माटी जो महक सी जाती है, उस महक का जो मैं करूं इत्र, वही इश्क सुगंध कहलाती है। क्या कभी चकोर को समझा है क्यों स्वयं को वह तड़पाती है, मयंक मिलन के मोह में मृत्यु तक उड़ती जाती है। महिवाल मोह में सोहनी की मटकी भी पकना पाई रे, और इसी इश्क में रहकर वे चिनाब में सदा समाई रे। इश्क इबादत में अंतर करने वाला अज्ञानी है, इश्क इबादत में अंतर करने वाला अज्ञानी है, और ईश्वर भी वंचित रह गए जिससे, वही तो प्रेम कहानी है, वही तो प्रेम कहानी है। मित्रों, इश्क की बात तो हो गई, पर क्या हो यदि किसी को इश्क और कर्म के बीच चुनाव करना पड़े। ऐसी ही एक परिस्थिति आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है प्रेम और कर्तव्य। मथुरा के गोपाला वृंदावन के लाडले, कान्हा था नाम जिनका केशव युद्ध पे चले, कृष्ण की विदाई से यह प्रकृति निराश है, भूमि दुख से सूखती और सजलाकाश है, माखन की मटकियां भी टूट तरस जाएंगी, इंद्र की इंद्राणियां भी रोते बरस जाएंगी, गोपियों के अश्रुओं से गंगा बहती जाएगी, जमुना के जल में अब मिठास न रह पाएगी। कृष्ण के जिस रूप की सृष्टि यह दीवानी है, वही रूप जिसके चरणों में बरसाने की महारानी है। ठहरो कृष्ण, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा, मनुष्य के इस मन में मात्र मोह घर बनाएगा। श्याम चक्षु में न अपितु अश्रुओं का स्थान है, विष्णु भी विवश हुए विधि का यह विधान है। कंस की हो क्रूरता या कौरवों का कर्म हो, विनाश पाप का जहां वहीं सनातन धर्म हो। पाप का अब अंत हो, धर्म की हो स्थापना, प्रभु स्वयं आएंगे जब अधर्म छाएगा घना। करने अंत कंस का कान्हा चले, छोड़ सब परिवार, प्रेम पुष्प सुख के दूर जा रहे रे अब, राधे को छोड़कर नाते सबसे तोड़कर, माधव जाते हैं देखो सबसे मुख मोड़कर, बंसी वह प्रेम की मुरलीधर अब छोड़ दो, भावनाएं वश में करो नाते सबसे तोड़ दो। प्रेम वह अटूट था पर धर्म का सवाल था, प्रेम वह अटूट था पर धर्म का सवाल था, लक्ष्य के समक्ष पार्थ कुछ भी ना विशाल था, कुछ भी ना विशाल था। मित्रों, भगवान कृष्ण को तो प्रेम और कर्तव्य के बीच में चुनना था, परंतु अर्जुन को उससे भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उसके समक्ष उसी के गुरु, परिवारजन एवं मित्रगण थे। इसी दुविधा को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिसका शीर्षक है अंतिम युद्ध। कुरुक्षेत्र में खड़े रे कान्हा, चिंतित उनका पार्थ है, कैसे वह समझाएं कि जो हो रहा वह यथार्थ है। हे माधव, यह क्या पीड़ा है, कैसे मैं सह पाऊंगा, स्वप्न में भी न सोचा था कि ऐसे मार्ग पर आऊंगा। खड़े हुए मुस्काए माधव भी एक बात बताते हैं, निंद्रा में देखे हुए स्वप्न पूरे कहाँ हो पाते हैं। तुमने अपना कर्म किया, बस यह पूजा पाठ है। बीत गए हैं दशम दिवस, शेष मात्र अब 8 हैं। इस सप्ताह तुम खो दोगे जीवन का सारा चैन प्रिय, पर अंतिम दिन को पूजेंगे स्वयं तेरे यह नैन प्रिय। तो उठो पार्थ और प्रहार करो, शत्रु पर पुनः वार करो, हर शत्रु का संहार करो। तुम ही तो हो सर्वश्रेष्ठ, संसार को यह सिद्धसार करो। अत्यंत पीड़ा पाओगे जब कुरुक्षेत्र में जाओगे, पर लक्ष्य प्रेम में पीड़ा क्या, स्वयं को ही भूल जाओगे। ना भूल अश्रु पांचाली के जो तेरे चक्षु से बहते हैं, ना दुग्धवत वस्त्र कुंती के तन से जो लिपटे रहते हैं। अंतिम अवसर बाकी है, पथ पर अग्रसर पार्थ हो। आदेश जगन्नाथ का पालन से कर्म फल विख्यात हो। अंत समय हो सुखद युद्ध का आज ऐसा संघर्ष हो। फल न सही पर आशा है कि कर्म का विशुद्ध निष्कर्ष हो। राम और रावण, यूं तो दो नाम हैं, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक धर्म और एक अधर्म, परंतु कलयुग में ये दोनों ही हमारे अंतर्मन में रहते हैं। इसी विचार से अगली कविता का शीर्षक है भक्त रावण। सत्य सदा ही अमर रहे, संतों से यह संसार चले। सावन में सुख ना बहे कभी, और सूरज भी ना कभी ढले। समक्ष मैं शीश नवाता हूँ, और मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ। जब सुनूं कथाएं वीरों की, मैं हिंद कवि बन जाता हूँ। फिर प्रश्न स्वयं से करता हूँ, चिंतन में जीता मरता हूँ। ज्ञानी तो कहता हूँ खुद को, फिर पाप घड़ा क्यों भरता हूँ। ज्ञानी ना कोई जाति है, अपितु एक प्रजाति है। जो जग को मार्ग दिखाती है, हर कला जहाँ पूजी जाती है। जिस दुविधा में फंस जाऊँ, कृष्ण को ही बस आस लगाऊँ। मक्खन का मैं भोग चढ़ाऊँ, गीता पढ़ना पढ़ना चाहूँ। नारी का ना मान करूँ, अपने पद पर अभिमान करूँ। फिर राम नहीं मैं रावण हूँ, फिर किस प्रकार से श्रावण हूँ। जब शूर्पणखा अपमानित हुई, मैंने भी शस्त्र उठाए थे। पर सीता का जब हरण किया, विचार न धर्म के आए थे। शिव तांडव का लेखक होकर, शिव से सीख न पाता हूँ। कि हर नारी में देवी है, अंततः नवरात पश्चात जलाया जाता हूँ। शास्त्र पढ़े और शस्त्र उठाए, ब्राह्मण भी मैं और क्षत्रिय मैं। पर पाप पुण्य में भेद कराना, तो कैसा हूँ अत्रेय मैं। सत्य धर्म का समझा मैंने, सर्वोत्तम से जब मिलन हुआ। मोह मिटे संसार के जब, पुरुषोत्तम हाथों मरण हुआ। धन्यवाद।
0: अभी हमने सुनी कृष्णा शर्मा से उनकी कुछ कविताएं, और कविताओं के बाद सुनते हैं ये गीत।

संभावनाएं अनंत हैं, स्काई इज द लिमिट, पर क्या आप ऐसा सोचने में सक्षम हैं? दोस्तों, दुनिया बदलाव की कगार पर है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस बदलाव को स्वीकार कर आसमान की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखते हैं या नहीं। इस बारे में आप जरूर सोचें और अपने दोस्तों से भी बात करें। इसी मोड़ पर लेते हैं हम विराम। कल मिलते हैं कुछ नई जानकारियों और गीतों के साथ। तब तक के लिए लेती हूँ मैं, तेजस्वी, आपसे विदा। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज।

0: आवाज कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: Gen Z भी है, है also Gen Old नई पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds. Download Waves OTT app now and watch for free.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम और अलीशा चनाई की आवाज़ों में, फिल्म का नाम अजब प्रेम की गजब कहानी। इस गीत को लिखा आशीष पंडित ने, संगीत प्रीतम का।

हैप्पी न्यू ईयर। लीजिए इस फिल्म में सुनिए इरशाद कामिल के बोल, संगीत विशाल शेखर का है, आवाज़ें श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। गीत के बोल इरशाद कामिल के हैं, अंतरा मित्रा और मोहित चौहान की आवाजें हैं। फिल्म का नाम राजनीति।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत पलक मुछाल और अरिजीत सिंह ने गाया है। नगमा निगार इरशाद कामिल, संगीत जीत गांगुली का है, आवाज़ें पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की है। फिल्म है आशिकी 2।

पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में गाए आशिकी 2 फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3,941 कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खाते में 282.99 लाख की प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 के अंतर्गत 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि इस पहल ने गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के दौसा में ऋषिकेश से इंदौर आ रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से यात्रियों के निधन पर गहन दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायलों और सभी यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आधारभूत सुविधाएं देना नहीं बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: थे जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
1: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं। ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं, और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे। क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को उस

0: होने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची

0: चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहां से कहां तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
1: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम। यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं।

0: तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद मैम।
3: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
4: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने

0: आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
0: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
0: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजदूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी कोई
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है? बोलो।
2: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
2: मुखिया जी!
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
6: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
6: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
6: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
6: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने तीन मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
6: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
6: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
3: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।

अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह। मैं उसे पकड़ लूं तो मैं भाई, लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए। हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए।

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। लेकर हम आए हैं साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की फिल्म इज्जत।

कार्यक्रम का अगला गीत अजनबी फिल्म से हमने लिया है। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, संगीत सलिल चौधरी का, फिल्म थी आनंद। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

आपको एक सूचना दे दें, गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुमंडित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 2660901 और 2660902। भोपाल का SDG कोड है 0755। दिन ब समय एक बार पुनः सुन ले, दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। फोन नंबर

0: से 2660901 और 2660902। भोपाल का STD कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
3: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
2: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
3: भीगते झूमते नाचें गाएं,
2: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
3: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 7 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और

980,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई

0: का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम, जिसमें सुनिएगा जैविक खेती से आर्थिक लाभ और स्वस्थ पर्यावरण विषय पर डॉक्टर गजराज सिंह वर्मा से ली गई भेंटवार्ता। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा आज रात 8:00। 8:15 पर फिल्म संगीत चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। केकड़ा, सचिन कुमार बाड़े का लिखा यह नाटक आप सुन सकते हैं आज रात 10:00। प्रस्तुतकर्ता दानिश अग्रवाल। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा अमित मलिक का वायलिन वादन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, इसे आप सुन सकते हैं

صبح 8:30 بجے 9:02 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुगम संगीत में 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे अश्विन रंगनेकर के गाए कुछ भजन, खो गया सब कुछ। अलमासुद्दीन सिद्दीकी का लिखा है नाटक आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 बजे, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र स्वरूप राजन का। सुबह 10 बजे सुनिएगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर। 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में सुनिएगा वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की सलाह, इस विषय पर डॉक्टर ऋतु पांडे से ली गई भेंटवार्ता। अब डालते हैं नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कल के कुछ कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसका प्रसारण होगा सुबह 11 बजे। 12 बजे सुनिए आपकी फरमाइश संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 बजे आप सुन सकते हैं हंसना मना है। 1 बजे महिला कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी जबलपुर की ही प्रस्तुति में 1:30 बजे सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, समय रहेगा दिन में 2:30 बजे। 5:33 पर और 6:30 बजे पुनः सुनिएगा फिल्म संगीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा कल रात 8 बजे। कुछ और फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकते हैं 7:15 बजे और 9:30 बजे। साथ ही साथ आपकी पसंद के फिल्मी गाने आप सुनेंगे कल 10:10 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे कल 10:30 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया शासन और नागरिक सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी पहल। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी अधिनियम लागू। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी में धान महोत्सव में सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, उज्जैन बालाघाट सहित 7 जिलों में झमाझम बारिश, बालाघाट डिंडोरी में कल अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरा होने पर इसे शासन और नागरिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसने शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने नवाचार की संस्कृति को गांव और छोटे शहरों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इससे AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे तकनीकों में भी तेजी से विकास हो रहा है।

0: वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू हुई देश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 81% डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से हो रहा है। 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारत नेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि AI क्षेत्र के लिए 45,000 से अधिक GPU स्थापित किए गए हैं और देश में 2,23,000 से अधिक स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। देश में आज से मनरेगा की जगह नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। सरकार ने इसके लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आज द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली 6-लेन सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 6,969 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 7,145 करोड़ रुपये है। इससे कानपुर कबराई का सफर 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा। ये परियोजना भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और सागर भोपाल तक कनेक्टिविटी मजबूत करेगी।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह समारोह विद्यार्थियों के वर्षों के समर्पण और परिश्रम की सुखद परिणति है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से समाज का ऋण चुकाने और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना युवाओं की ऊर्जा और प्रतिबद्धता से ही साकार होगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव कार्यक्रम में करीब 145 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। डॉ. यादव ने इस मौके पर करीब 350 करोड़ की लागत से 586 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। ये राशि 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दी गई है। इस मौके पर डॉ. मोहन यादव ने कहा,
3: मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से, हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपये की राशि अंतरित की जा रही।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी जिले के तलून में खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़वानी और निमाड़ की धरती संतों और लोक परंपराओं से समृद्ध रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मंदिर सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। राजस्थान के दौसा जिले में कल रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में प्रदेश के कई यात्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से संपर्क बनाए रखते हुए प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त और रोजगार उन्मुखी बनाना जरूरी है। मंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन के तहत प्रदेश में 1,44,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने पंचायतों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए। विदिशा जिले में हृदय रोग से पीड़ित 2.5 माह की मासूम अवनी को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अहमदाबाद भेजा गया। अवनी का उपचार आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क होगा। टीम ने बच्ची को उसके माता पिता सहित सुरक्षित भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से उसे अहमदाबाद रवाना किया गया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत राज्य के गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए बड़े अस्पतालों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता है। बात खेल की। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी मोहम्मद कोनेन दाद का चयन भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर रहेगी। मोहम्मद कोनेन दाद फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने करीब एक साल से नंबर 1 पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल पहले और शुभमन गिल दूसरे स्थान पर हैं। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है। आज उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां मुख्य अतिथि रहे। खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन लाइए चाय पीजिए अभियान शुरू किया है। बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय परिसर में पॉलीथीन जमा करने वालों को निःशुल्क चाय दी जा रही है। डॉक्टर्स डे पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सक कल्याण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आगरमालवा में इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम, जामुन और नीम जैसे औषधीय पौधे रोपित किए गए। राजगढ़ में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मानसून सत्र के दौरान रेत उत्खनन पर रोक लगाई। 1 अक्टूबर तक जिले की समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। बैतूल जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत करीब 1,65,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई और शिवपुरी शहर के मनियर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन ने कार्यवाही की। राजस्व टीम ने JCB से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को हटाया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ग्रामीण भाई,
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनवे वाले हमारे सभी भैया हरन को, भौजी हरन को, बिन्ना हरन को आरती की राम राम। और भैया हरो कैसे हाल चाल है आप सबके? भैया हरो अब तो देखो कितेक उमस होती है ना अबे नो, लेकिन का है कि पानी नहीं गिरो सो गर्मी भी हो रही थी, लेकिन कल रात से जौन तनक मनक पानी सो कछु गिरो है तो राहत तो भैया कछु हो ही गई है। हालांकि मानसून ने आवे में तनक देर तो कर दी है, तो अब जब पानी नहीं बरसो तो देखो अपने कितने काम रुक गए है ना। अब जुलाई को महीना लग गया है, आषाढ़ चल रहे हैं, तो जय टाइम तो भैया देखो खरीफ की बोनी के लाने सबसे ज़रूरी टाइम होते हैं, और ऐसे में भैया खेतन में काम कितने डरे हैं। तो भैया रो पानी की कहें तो जो पानी भी ऐसो बरसत है कि का कहें, कभों तो खूब रिमझिम बरस जाते हैं और कभों अभेनो एक बूंद ना गिरी। तो भैया अरे तुम औरन के इतने पानी गिर गओ होए, खेतन में बढ़िया तरी सी आ गई होए, तब ही खरीफ की बोनी को काम शुरू करियो। काहे से खेतन में पैर धसवे लायक नमी होवे पे ही हमारे भैया हरे सोयाबीन मक्का ज्वार बाजरा मूंग उड़द की बोनी शुरू कर सकते हैं। और अगर ऐसो नहीं है तो भैया हरे अबे आपको बोनी नहीं करने हैं। और बोनी से पहले भैया एक बात आपको याद रखने हैं कि बीज खां अपन पहले फफूंदनाशक दवा से या कोनो जैविक तरीका से बीज को उपचारित कर ले। इसे कहा होता है कि जो कोपल होते हैं वो मजबूत निकलते हैं और फसल का बीमारी भी नहीं लगत। और संगे संगे खाद को संतुलन भी भैया सही होना चाहिए, नाइट्रोजन पोटाश और फास्फोरस जिको सही मात्रा में यदि अपन खेतन में दें तो भैया पौधन की बढ़वार अच्छी हुई है, उन्हें अच्छी ताकत भी मिले। तो कहूँ कहूँ तो बरसा रानी तनकऊ मेहरबान नहीं भई, और ऐसे में भैया का है कि हम तो आपसे यही कहें कि तनकऊ भी घबराने नहीं है। अगर पानी नहीं गिरो है, खेत सूखे डरे हैं, तो सूखे में बोनी की गलती बिल्कुल नहीं करने जब तक 3-4 इंच तक की अच्छी गहराई में नमी ना हो जाए। भैया हरो बीज में जो बीज हैं माटी में नहीं डालने हैं, नहीं तो कहा है कि बीज खराब हो जाए। और यदि बारिश लेट हो रही है ज़्यादा पानी तो अपन जो भी कर सकते हैं कि अपन ज़्यादा पानी वाली फसल की जगह कम पानी वाली फसल बो सकते हैं है ना। अब जैसे बाजरा है, तिल है, ग्वार, मूंग उड़द की कछु किस्में ऐसी हैं जो जल्दी आ जाते हैं। तो साथ ही अपन जो भी करें कि गहरी जुताई की जगह हल्की जुताई कर दे जा समय, उसे कहा है कि माटी के भीतर की जो नमी है वो घाम से उड़ नहीं पाए। और अगर आपके पास भैया कुआं बोरिंग की व्यवस्था है तो भैया आप जो भी कर सकते हैं कि फव्वारा विधि से यानी कि स्प्रिंकलर से अपनी फसलन में हल्की सिंचाई कर देवे से पानी भी उसे बचे और आपकी फसल को जीवनदान भी मिल जाए। और आपको बता दे भैया रो कि वन महोत्सव सप्ताह मनाओ जा रहा है, आज से आषाढ़ को महीना लग गया है, तो काहे ना भैया हम अपने आसपास पेड़ पौधा लगाएं। और भैया हरो जो तो हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाओ जाते हैं। अब इको सीधो साधो मतलब भैया देखो जो ही है कि इस 7 दिना में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं। और भैया रो देखो का है कि बरसात को समय है, और बरसात के समय में पेड़ पौधा लगावे के लाने जो समय है जो पेड़ पौधा लगावे के लाने सबसे अच्छा समय मानो जाते हैं। काहे से जब टाइम पे पानी गिरते और जब पानी गिरे है तो देखो पेड़न की जो देखभाल है वो अच्छी हो जाते हैं, पेड़न की जड़ें जल्दी मट्टी पकड़ लेते हैं और वे जल्दी पनप भी जाते हैं। तो अब तुम्हारे सोचत हो कि का हम किसानन को ई वन महोत्सव से का लेने देने? तो भैया हरो जे पेड़ हमारी खेती के प्राणा है ना। काहे से देखो अभी बारिश को बुलाओते, जितने ज़्यादा पेड़ उतने ही अच्छी बरखा, पेड़न से बदरा खींच के आते और समय पे पानी गिरते, और जब जोर से पानी गिरते तो खेतन की उपजाऊ मिट्टी भैया काहे बह जाते है ना। लेकिन जो पेड़न की जड़ें हैं जब मट्टी को पकड़ के रखते जिसे वो बह नहीं पात, उपजाऊ मिट्टी बह नहीं पाती और खेतन की ताकत जो है वो बनी रहते। तो देखी जाए तो जो पेड़ भैया हरो हमें केवल छाँव ही नहीं देते बल्कि जे हमारी आमदनी को जरिया सो आए है ना। अब वो कैसे भैया देखो आम नीमुन अमरूद कटहल आंवला बेर शहतूत नी शीशम नीम जो भी है पेड़ पौधा है भैया देखो जे हमें फल फूल औषधि तो देते ही है, संगे संगे हमें सबसे ज़्यादा जीवनदायी प्राणवायु ऑक्सीजन भी इनसे ही मिलते। तो हम काहे ना ऐसा कर लें कि जो न अपने खेतन की मेड़े डरी हैं उन पे अपन और या कोनो बंजर जमीन है या खाली जगह डरी है उतने अपन पेड़ लगा दें। उसे कहा हुई है कि उसे अपनी फसल को

कोनो नुकसान ना हुए। और जई को भैया देखो एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी भी कहते हैं। अब जैसे फलदार पेड़ आम अमरूद जामुन करौंदा नींबू कटहल कितने पेड़ हैं, इको अगर अपन खेतन की मेड़न पे लगा दे हैं तो उसे कहे घर के लाने भैया फल अपन खा मिल जाए। संगे संगे इको अगर अपन मंडी में बेचते हैं भैया तो घर में पैसा आ है और आमदनी भी हुई है। और जब पैसा आते भैया आत भाई जो रुपया है कीखों बुरो लगाते है ना, जब घर में आमदनी हुई है तो देखो घर वाले भी खुश, हमारी बॉजी बिन नहारे भी खूब खुश कि भैया उनके मन की भी हो जाए है ना, उन्हें कछु खरीदने खरादने हैं तो वो काम भी उनको हो जाए। तो भैया जई लाने जो पेड़ पौधा है, अब जैसे इमारती लकड़ी की अपन बात करें तो जैसे सागौन है, शीशम है ना, बांस है, बबूल है, ईखों भी अपन अपने खेत की मेड़न पर लगा सकते हैं। अब बांस तो भैया कही जाए तो जो हमारे किसान भैया हरन को सबसे बड़ो मीत है ना, खेत के हर काम में बांस जो लगाते हैं। ऐसी नीम की बात करें तो भैया नीम जो है खेत की मेड़न पर अपन लगा दे हैं तो देखो का है कि नीम जो है हम औरन को यानी हमारे गाँव को वो डॉक्टर आए, इसे जाकि हवा से कीड़ा मकोड़ा दूर रहते हैं, जाकि निबोरी पत्ती ऐसा कौन सी चीज़ नहीं है जिसे हम जैविक कीटनाशी दवा ना बना पाएँ। तो भैया हरो हम सब ने पेड़ पौधन की महत्ता जान ली कि जे हमारे कितने काम आते हैं, लेकिन लगावे के संगे संगे भैया एक बात को भी हमें ध्यान देना है कि हमें ईखों बचाने भी है, जो नहीं है कि हमने खाली गड्ढा खोद ले उमें पेड़ पौधा लगा दे है ना और उसे काम बन जाए, जब तक उनकी देखभाल ना करो वे पनप नहीं पाए। तो सबसे पहले उन्हें जंगली जानवरन से बचाएं, जी के लाने पेड़ पौधा के चारों ओर अपन कांटेदार बाड़ जैसी बना दें, फेंसिंग लगा दें है ना, और पेड़ लगावे के बाद बीच बीच में जो भी दिक्कत रहे कि कहूँ पानी की कमी तो नहीं है, अगर पानी की कमी है तो बीच बीच में सिंचाई करत रहें है ना। और जैसे अपन अपने मोड़ा मोड़न को पालत है ऐसे ही भैया इन पेड़ पौधन को 2-3 साल तक अपन को पालने पड़ते हैं। एक बार वे तनक बड़े हो गए फिर वे खुद ही अपना ध्यान रख ले हैं और फिर बाद में जिंदगी भर तुमाओ ध्यान रखें। तो आज जौन अपने खेतन में पेड़ ठाड़े हैं वे अपने पुरखा ही तो देखो लगा के गए हैं और वही की छाँव में हम और तनक बैठ के सुस्ता भी लेते हैं। तो अब जो हमारी और तुम्हारी जिम्मेदारी बनते भैया कि हम अपन और अपने लड़कन बच्चन के लाने कछु पेड़ पौधा लगा दे, आगे चल के उन्हीं को फ़ायदा हुई है और उन्हें शुद्ध हवा पानी मिले, तो भैया जे वन महोत्सव है अपन सब जने जई संकल्प लें कि हम सभी भैया हारे अपने खेत की मेड़ पे, घर के आंगन में, कुआं की पौर पे है ना, जितने खाली जगह पनखा दिखे उतने कम से कम 5-10 पेड़ जरूर लगाएं। और भैया हारो हम तो जो ही कहें कि पेड़ लगाओ, धरती बचाओ और अपनी खेती को खुशहाल बनाओ। तो देखो भैया जो विनोद पुरोहित दद्दा आज जो गीत जई से जुड़ो लेके आए हैं पर्यावरण गीत, तो का कहबो चाह रहे हैं गीत के माध्यम से चलो हम और आप मिलके चलते हैं उनकी टोली के पास और सुनत हैं जो गीत पर्यावरण गीत आम नीम अमरूद।

0: तो भैया रे देखो, अबे जैसे तनक देर पहले हम आपसे बात भी कर रहे हते कि यदि पानी कम गिरे तो भैया अपन ऐसी कौन कौन सी फसल बो सकते, कौन कौन सी फसल ले सकते जिसे अपन को नुकसान ना पहुंचे। तो भैया आज अपनी वार्ता को, भेंट वार्ता को विषय भी यही है कि अवर्षा की स्थिति में फसलों का चयन, और जा विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RS शाक्यवार, और इनसे भेंट कर रहे हैं श्री सोहन सिंह। तो चलो चलते हैं डॉक्टर RS शाक्यवार के पास और लेते हैं जानकारी। विषय है जी को अवर्षा की स्थिति में फसलों का चयन।
1: किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे थे कि इस बार बारिश कम हो गई, लेकिन देखने में आ रहा है कि बारिश कम होने के साथ साथ बारिश विलंब से भी होने की संभावना है। इस स्थिति में हमारे किसान भाई अपनी फसलों की किस तरह कार्य योजना बनाएं जिससे फसलों की स्थिति भी अच्छी रहे और फसलों से उत्पादन भी अधिक मिले, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं संयुक्त संचालक कृषि श्री RS साकेवार। साकेवार साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। साकेवार साहब, जैसे ही खरीफ का मौसम आने लगता है, हमारे किसान भाई अपनी खरीफ की फसलों की बुवाई को लेकर तैयारी करने लगते हैं।
2: जी,
1: अब बारिश होने की संभावना विलंब से लग रही है, तो हमारे किसान भाइयों को क्या अभी खेती में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है?
2: ग्वालियर में अभी तक जो वर्षा हुई है वो 52.20 mm, जबकि गत वर्ष ये 187 mm के आसपास हुई थी, और दतिया में भी इस वर्ष अभी 19.80 mm बारिश हुई है, जबकि गत वर्ष 70.75 mm के आसपास हुई थी। एवरेज की बात करें तो 79.48 संभाग में जो है ना औसत जो बारिश हुई थी वो जो इस साल हुई है, जबकि गत वर्ष 230 mm बारिश हुई है। तो गत वर्ष से बारिश जो हो रही है वो कम है और थोड़ा सा विलम्ब से भी है। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करते हैं क्या सलाह देना चाहिए हमारे किसान भाई क्या करें, शासकीय स्तर पर भी हम लोगों ने कोशिश ये की है कि इस वर्ष जो ना विगत वर्ष की अपेक्षा धान का जो रकबा है उसको कम किया जाए। और अभी कुछ दिन पहले कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की बैठक हुई थी, भोपाल स्तर से ऑनलाइन अधिकारी जुड़े हुए थे, तो उनके भी निर्देश थे कि पानी कम गिरेगा, तो हमारे किसान भाइयों को हम लोग ये सलाह दें कि कम पानी वाली फसलों को हमारे किसान भाई लगाएं। धान की फसल को जिसमें पानी ज़्यादा लगता है तो उसको हम हतोत्साहित करें, और जिसमें कम पानी लगता है चाहे वो मूंग हो, चाहे फिर उड़द हो, चाहे फिर जो है ना मूंगफली हो, उड़द हो, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये फसलें लगाने के लिए हम किसानों को समझाइश दें, हम उनको प्रेरित करें। संभाग में यदि हम बात करें तो धान का रकबा जो है ना लास्ट ईयर हमने जो रखा था वो करीब 3,29,175 हेक्टेयर में धान का रकबा था, इस वर्ष हमने उसको कम किया है और करीब 3,13,000 के आसपास पर हम किसान भाइयों को सलाह दे रहे हैं कि वो कम धान की फसल को लगाएं, तो निश्चित रूप से ये धान का रकबा और भी कम होने की संभावना है।
1: साकवा साहब, कुछ खेत ऐसे होते हैं, गहरे होते हैं, जिनमें हम धान की फसल लगा सकते हैं, दूसरी फसल उनमें सामान्यतः लगाई नहीं जाती हैं, तो कुछ ऐसी धान की प्रजातियां हैं जो कम अवधि की होती हैं और उनसे पैदावार भी अच्छी मिल सकती है।
2: कि धान की वैरायटीज रोपाई करते हैं

0: उनको हम लगाते हैं तो उनमें पैदावार हमारे किसान भाई ले सकते हैं। ख़ास तौर से जो ना जो अपलैंड खेत होते हैं उनमें भी जो ना हमारे किसान भाई जो ना धान की जब फसल लगाते हैं, रोपा लगाते हैं, तो उसमें भी पैदावार मिल सकती है, जो कम अवधि की जो फसलें हैं। इसके अलावा एक पद्धति है सीधी बुआई की, जिसको DSR भी बोलते हैं, DSR पद्धति। तो DSR पद्धति से मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस उसको बोलते हैं, कि सीधे किसान हमारे खेत में जो ना धान के खेत में बुआई करे, तो वो भी किसान भाई कर सकते हैं। पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये है उसमें कि पानी उसमें ज़्यादा दिन तक भरा ना रहे। जब हम DSR में सीधी बुआई करते हैं तो पानी ज़्यादा दिन भरा ना रहे, तो फिर वो जो ना उसमें दिक्कत नहीं होती है और पैदावार उसमें भी मिल जाती है। पर यदि मानसून लेट होता है, जैसे कि अभी आज 1 जुलाई हो गया, आज नॉर्मली जो ना 15 जून जो ना मानसून का ऑनसेट रहता है ग्वालियर में, जो ना 24-25 जून के आसपास मानसून आता है, इस बार 1 सप्ताह करीब लेट है। ऐसी स्थिति में यदि 15 जुलाई तक भी मानसून आता है तो फिर हम किसानों को सजेस्ट ये कर देंगे, जो हमारी हल्की ज़मीनें हैं, शीघ्र पकने वाली जो जातियाँ हैं उनका एक तो प्रयोग करें, और जो मध्यम भूमि है तो उसमें जो ना हम किसानों को सलाह देते हैं कि बीज की जो मात्रा है वो 25% करीब जो ना हमारे किसान भाई बढ़ा दें, और जो भारी भूमि है जहाँ पर धान की खेती किसान जनरली करते हैं तो वहाँ पर जल्दी पकने वाली जो वैरायटी है उनकी रोपाई करें। और यदि किसान भाई सोयाबीन और मक्का लगाते हैं तो जल निकास की व्यवस्था रखें, ताकि जो ना उसमें पानी यदि भर जाता है तो फसल को कोई नुकसान ना हो, और बीज दर को भी, जो हमारा सीड का रेट है उसको भी 25% हमारे किसान भाई बढ़ा के बोनी करें उसकी, तो निश्चित रूप से उससे लाभ होगा। यदि 1 जुलाई को भी मानसून आता है, हमारे वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि जो हमारी उड़द मूंग है, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनकी फसलों की खेती करें। और मक्का में जो मेड़ कूड़ पद्धति होती है, जिसको कहते हैं रिज फरो, तो रिज फरो चाहे फिर वो सोयाबीन हो चाहे फिर वो मक्का हो, यदि हम रिज फरो पद्धति से बोनी करते हैं तो सभी जानते हैं किसान भाई के, यदि जो ना बरसात कम होती है तो जो नाली में पानी रहता है उससे मॉइस्चर रहता है तो वो पौधे को मिल जाता है, और यदि ज़्यादा पानी गिरता है तो नाली से वो ड्रेन हो जाता है। तो ये रिज एंड फरो की जो पद्धति है उसका भी उपयोग कर सकते हैं हम। नमी संरक्षण की बात होती है तो जो मल्चिंग का काम है जिसको पलवार बोलते हैं, तो वो भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। पलवार से भी ये देखा गया है कि 30-40% नमी का जो है ना कंजर्वेशन होता है, नमी का बचत होती है। हम जो ना फसल लगाते हैं और पानी कम होता है तो मल्चिंग कर सकते हैं किसान भाइयों के पास, यदि धान का पैरा है तो उसको बिछा दें। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह कि हमारी जो बुआई है वो लाइन से होना चाहिए। लाइन से यदि आपने बोनी की है तो मल्चिंग का काम आप कर सकते हैं, उससे 30-40% जो हमारी नमी है वो जो ना सुरक्षित रहती है। निदाई गुड़ाई का काम भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं, उससे भी हमारी नमी का संरक्षण होता है। अंतर्वर्ती एक जो ना प्रैक्टिस है, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है अंतर्वर्ती, अंथा सस्यन जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो अंतर्वर्ती यदि हम फसल किसान भाई लगाते हैं तो ये माना जाता है कि यदि एक फसल में नुकसान होगा तो दूसरी फसल से लाभ हमारे किसान भाई को मिल जाता है। अंतर सस्यन है, इंटरक्रॉपिंग है, उसका भी प्रयोग करके ऐसे मौसम में हम जो ना उत्पादन कुछ ना कुछ हमारे किसान भाई ले सकते हैं।
1: साकवास साहब, जैसे अपने क्षेत्र में जो तिल है
0: जी,
1: कम वर्षा की स्थिति में इसका भी उत्पादन अच्छा मिलता है?
0: बहुत अच्छा होता है। उड़द और मूंग की बोनी 15 जुलाई तक किसान भाई कर सकते हैं, कोई जो ना पैदावार का नुकसान नहीं होगा, अच्छी पैदावार मिलेगी। इसी प्रकार से तिल अगस्त अंत तक इसकी बोनी कर सकते हैं तो किसान भाइयों को पर्याप्त पैदावार इसमें मिलेगी। और यदि जो ना आपके पास ट्यूबवेल है, आपके पास एश्योर इरीगेशन है, सिंचाई की सुविधा आपके पास है, तो फिर जो ना आप रोपा है उसका उपयोग कर सकते हैं। रोपा में यही कहेंगे कि मैक्सिमम 15-16 दिन का रोपा आप लगा दें। पहले तो कहते थे कि 21 दिन का रोपा लगाना चाहिए, पर आजकल नई वैरायटीज़ आ गई हैं, तो 15-16 दिन का रोपा आप लगा दें, ताकि जो ना ग्रोथ प्रॉपर टेलरिंग हो जाए उसकी समय से, और क्रॉप जो ना वो हमारी फसल है ना वो खेत में जल्दी से इस्टेब्लिश हो जाए। एक कुसुम भी फसल है जो कि अगस्त और सितंबर के एंड तक लगा सकते हैं, आखिरी तक लगा सकते हैं। ज्वार है, बाजरा है, ज्वार में बहुत सारी वैरायटी अच्छी है हमारे क्षेत्र में, ग्वालियर में खास तौर से मुरार के क्षेत्र में ज्वार बहुत होता है। तो ज्वार 1862 RBG 1862 वैरायटी है, 2357 है, ये 2357 वैरायटी ऐसी है कि इसमें इथेनॉल अच्छा मिलता है, तो ये वैरायटी का भी यूज़ कर सकते हैं किसान भाई। कुछ संकर ज्वार भी हैं जिसमें अच्छी वैरायटी, एक CSH 25 है। बाजरा हमारे क्षेत्र में सामान्य तौर पर किसान हाइब्रिड लगाता है, संकर बाजरा की बोनी करता है, तो संकर बाजरा की बोनी अभी हो सकती है। कंपोजिट में भी कुछ जातियाँ हैं जैसे JBV 4-5, जुलाई के फर्स्ट वीक तक बाजरे की बोनी भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कम पानी में पानी का प्रबंध कैसे करें, जल संरक्षण की बात कैसे करें और नमी का संचय कैसे करें, ये महत्वपूर्ण है ये कम वर्षा की स्थिति में।
1: साकेबा साहब, जहाँ पर हमारे किसान भाई धान की फसल लगाते हैं, तो धान की फसल में डॉक्टर साहब काई आती है नमी संरक्षण के लिए, उसका भी उपयोग कर सकते हैं?
0: हाँ, एक जो ना होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको जो ना BGA भी बोलते हैं। अब वो ब्लू ग्रीन एल्गी का यदि हम स्प्रे कर देते हैं, उसको छिड़क देते हैं, जो कि मिल जाती है आसानी से, तो वो जो ना नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करती है उस खेत में रह करके, तो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको जो ना फिक्स करती है और वो पौधे को देती है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा उसका यह है कि रबी की क्रॉप के लिए भी उसमें फ़ायदा होता है, आगे की जब हम जो फसल लगाते हैं उसमें भी उसका फ़ायदा होता है, तो उसका भी उपयोग हम लोग धान की खेत में कर सकते हैं। सीड को जो ना जो बीज हम बोनी करें, किसान भाई चाहे धान की बोनी करें या फिर जो है ना मूंग की बोनी करें, उड़द की बोनी करें, अरहर की बोनी करें, तो चूंकि हमें जर्मिनेशन जल्दी करना है, खेत में मॉइस्चर की कमी है, तो बीज को भिगो करके हम सोइंग करें। बीज को हम जो ना थोड़ा सा उसको पानी में भिगो दें और रात भर उसको रखा रहने दें, और इसके बाद हम बोनी करें, तो हमारा जर्मिनेशन जल्दी होगा और आसानी से होगा और मॉइस्चर की आवश्यकता कम पड़ेगी उसमें। ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी किसान भाई कर सकते हैं।
1: साकेबा साहब, बीज को भिगोने के बाद जो है बीज को जो फफूंदनाशक दवाएं होती हैं उनसे उपचार?
0: बिल्कुल, बीज को भिगोया है तो फिर उसको सुखाएं भी, हल्का सा उसको सुखाएं, और सुखाने के बाद जो है ना जो बीज उपचार की दवाएं हैं, चाहे कार्बोनाजिम हो, थायरम है, जैसी जिसकी ज़रूरत है, और जैविक भी जो है ना कुछ फंजीसाइड हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी हमारे किसान भाई जो ना उपचार करके बीज का इसके बाद बोएं। कल्चर भी आते हैं, PSV कल्चर है, राइजियम कल्चर है, अब दलहनी फसलों में राइजियम का यूज होता है। PSV जो ना आप खेत में सोइंग के समय डाल सकते हो, खेत की तैयारी के समय डाल सकते हो, ये ध्यान रखते हैं कि दवाई का उपचार करने के बाद हम PSV राइजियम एजेटोबैक्टर ये कल्चर हैं, इनका उपयोग भी कर सकते हैं, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है वो भी अच्छे से हो जाए। अच्छा, मैं जब ज़्यादा नमी और पानी की कमी होती तो रिकमेंड करते हैं वैज्ञानिक के 2% DAP के स्प्रे का घोल भी रिकमेंड करते हैं, 2% यूरिया के घोल का रिकमेंड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि नमी का संरक्षण होता है, और स्टोमेटा जो होते हैं ना वो पानी को कम उड़ाते हैं और उससे पौधे में जो ना पानी की मात्रा बनी रहती है, तो ये अनुशंसाएँ हैं वैज्ञानिकों की और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमारे किसान भाई नमी का संरक्षण कर सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: साकेबा साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को विलंब होती वर्षा में फसलों का किस तरह संयोजन करें जिससे फसल भी स्वस्थ रहें और उत्पादन भी अधिक मिले, इस बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया रे देखो, अबे अपन खा वर्षा की स्थिति में फसलों का चयन, जब विषय पर डॉक्टर RS शाकेवार ने हमें इतनी अच्छी नौनी जानकारी दी, और इनसे बैठ कर रहे थे श्री सोहन सिंह भैया। तो भैया हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो हमें जानकारी दी है, इको सुन के आप सब जा से लाभ भी उठा हो कि भाई अगर कम वर्षा हो रही है तो ऐसी स्थिति में अपन कौन कौन सी फसलों को चयन करें जो अपन को अच्छा लाभ दें। और भैया हर अपन करत हैं, आपसे चर्चा करत हैं। भैया देखो, आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है, और हर साल 1 जुलाई को हमारे नेशनल डॉक्टर्स डे मना होते हैं। आज के दिन अपने देश के डॉक्टरों को सम्मान देवे को देना है, और जब हमारे का बताएं आपको कि इतने जब आ रहे थे तो सरकारी अस्पताल में खूब ही रोल चौल हती। सो हम अपनी सरपंच जी के पास गए तो का देखे कि उनने डॉक्टरन के संगे संगे सभी के लाने जलपान और डॉक्टर सम्मान समारोह जो कार्यक्रम है बाकी व्यवस्था करी है। तो भैया अब हम तो यही कहें कि हमारे दिमाग में तो आई, लेकिन संगे संगे आप और उनके दिमाग में भी जो बात आ रही हुई है कि जे दिना 1 जुलाई को ही काहे मनाओ जाते हैं और ई के पीछे की का कहानी है, तो चलो हम आपको बता देते हैं कि देश के एक अपने देश के बहुत बड़े एक डॉक्टर रहते जिनको नाम है तो डॉक्टर विधानचंद राय, यानी डॉक्टर BC राय, और उनको जो जन्म और मृत्यु की बात करें तो भैया हरो 1 जुलाई उनकी तिथि हती कि बई दिना उनको जन्म और बई तिथि पे उनकी मृत्यु भई हती। और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मरीजन की सेवा में निकाल दी। वे बहुत बड़े अच्छे प्रसिद्ध डॉक्टर रहते, बाद में वे पश्चिम बंगाल के देखो मुख्यमंत्री भी रहे। तो उन्हीं की याद में और सब डॉक्टरन के धर्म खरम को का मान देवे के लाने जा दिना को पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ मनाओ जाते। काहे से देखो ना, अपन और एक कहत भी तो है कि डॉक्टर भगवान को रूप होते है ना, वे मरीजन को मौत के मुंह से वापस ले आते हैं। अब देखो ना, शीला भौजी के पेट में कितनी जोर से पीर उठी थी, तो अब वे अपने गांव के जो डॉक्टर साहब थे वे आधी रात को उठ के गिरत पानी में उनकी उनने जान बचाई। अब देखो तनक अगर वे ना होते तो समझो शीला भौजी आज हमौरन के बीच में ना होती। तो भैया रे दूर काहे जाते हैं अपन। अगर कोरोना काल की बात करें तो बात समय भी देखो, हम सभी घरन में दुबके बैठे थे, कोनो बीमार को देखवे तक नहीं जाता, तो है ना अपनी जान बचावे के लाने घरन में सब छुपे बैठे थे। तब जे ही डॉक्टर और नर्स भैया आ रहे अपनी जान हथेली पे धर के घर में अस्पतालन में ड्यूटी कर रहे थे, मरीजन की सेवा कर रहे थे। और ना उनने देखो घर के खाने पीने की चिंता हती, ना उन्हें कछु भी, ना उन्हें गर्मी सर्दी के कछु वो हतो, बस एक ही लगन हती कि कैसे करके मरीजन की सांसें बचा लें, है ना। तो कितने डॉक्टर ने तो देखो दूसरन की जान बचात बचात अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे डॉक्टरन ने सेवा करी, लेकिन आजकल हमारे का देखा था कि कछु भैया रे अस्पताल में कछु काम बिगड़ गओ, अस्पताल में जाके डॉक्टरन से गुस्सा हो गए और उनसे लड़वे लगते हैं, उन पर हाथ उठा देते हैं। तो देखो जी बात ठीक नहीं है, है ना। देखो तो डॉक्टर अपनी तरफ से मरीज को बचावे के लाने पूरी कोशिश करते, अच्छे से इलाज भी करते हैं। तो अब जे अस्पताल में जाके लड़ना तोड़फोड़ करना जी भैया कहाँ की अकलमंदी है भाई, उन पे भरोसा रखो, उन्हें सम्मान दो, है ना। तभी तो देखो आज सरपंच जी ने उन डॉक्टर साहब के सम्मान समारोह उनके लाने रखो हो, और उनके लाने देखो शॉल जो है फूल माला है वो सब की व्यवस्था करिए कि भाई बा को पहना के उनको सम्मान करें, जिसे डॉक्टर साहब को भी अच्छा लगे और गांव वाले हैं उनको भी बड़ो गर्व को एहसास हुए कि देखो अपने गांव के डॉक्टर को देखो हम सब ने मिल के सम्मान करो, है ना भाई। गांव वाले भी तो उन डॉक्टर साहब की कदर करते ही हैं। तो हम तो यही कहें कि बाल गोपालन से भी कि भाई पढ़ लिख के डॉक्टर बने और अपने गाँव देश को नाम ऊँचो करें। तो आज हम सभी अपने अपने क्षेत्र के डॉक्टर को सम्मान देते भाई, उन्हें राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की शुभकामना देते हैं, ताकि डॉक्टर ऐसे ही मरीजों को भाई स्वास्थ्य लाभ दे सकें, उनकी ज़िंदगी बचा सकें। तो आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है, इसी अवसर पर हम आपको आज डॉक्टर निखिल पुरोहित जो विशेष दंत चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, इन्हें डॉक्टर बनने की प्रेरणा कैसे मिली, किनसे मिली, तो आइए जानें और सुने उनके विचार डॉक्टर निखिल पुरोहित की आवाज़ में।
3: मेरा नाम डॉक्टर निखिल पुरोहित है, मैं एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और पिछले 20 साल से ग्वालियर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा अपने पिताजी डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित जी को देख के मिली। हमेशा यही कोशिश की कि जिस तरह से वो डेडिकेशन से अपने मरीजों को देखते हैं और अपने मरीजों के प्रति कंसर्न रहते हैं, मैं भी उसी चीज को फॉलो करूँ। डॉक्टर बनने की जो पूरी जर्नी थी वो बहुत अच्छी रही, एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपको हर रोज मिलता है, आप रोज पेशेंट्स से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, और जब आप देखते हैं कि आपने उस समस्या का निवारण कर दिया है तो जो वर्क सेटिस्फेक्शन है वो बहुत अच्छा मिलता है। मेरे हिसाब से एक डॉक्टर को मरीज की पूरी बात सुननी चाहिए, मरीज की पूरी समस्या सुन के ही उसका निवारण करना चाहिए। आप सभी श्रोताओं को डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।
2: तो देखो डॉक्टर निखिल पुरोहित ने अपने विचार हम सबके सामने रखे, तो हम भी भैया हम सभी मिलके आज सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं। और चलते चलते ये लोकगीत हो जाए आपके मनोरंजन के लाने, तो सुनते हैं हम सब देवकी नंदन केवट के स्वर में ये लोकगीत।

तो भैया रे देखो, जावे की बेरा हो रही है, अब हम आपसे विदा लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। सभी किसान भैया हरन को आरती की, राम राम, जय जवान जय किसान।

0: अपनी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज से जो एक नया अधिनियम अस्तित्व में आ रहा है वह किस रूप में पुराने का स्थान लेगा और नया बदलाव कहाँ कहाँ किस स्तर पर दिखेगा।
3: सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसमें बदलाव की ज़रूरत थी। वो योजना 2006 में लागू की गई थी और आज हम लोग 2026 में हैं
2: जी,
3: तो लगभग 19-20 साल का समय बीत चुका है और इन दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। आमतौर पर मनरेगा को रोजगार

0: यानी कि उसका असर किस तरीके से दिखता है। तो ये जो नई योजना वीवीजी रामजी है, इसका मूल मकसद यह है कि रोजगार के साथ साथ लंबे समय के लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरी की जाए। अब अगर मैं इसमें कहूँ कि जो प्रमुख बदलाव हैं, तो पांच अगर मैं प्रमुख बदलाव की बात करूँ तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव ये है कि जो गारंटी थी वो पहले 100 दिन की थी, अब वो 125 दिनों की है
1: जी।
0: दूसरा क्या है कि ग्रामीण स्तर की योजना, जैसे एक गांव की जरूरत क्या है, अब देखिए देश में 6 लाख 7 लाख जितने भी गांव हैं हमारे, हर गांव की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से विकसित की जानी है, उसकी मैपिंग कैसे की जाए, वो मैपिंग करने के बाद उस आधार पर उनके लिए जिसे कहा जाए कि ग्राम विशेष के लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरे की बात करूं तो तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप तीन चीजों पर ध्यान रखिए कि एक है कि सैटेलाइट के जरिए एक गांव की एक छवि आपके सामने आ गई, उस छवि के जरिए ये पता चल गया कि इस गांव की बुनियादी जरूरतें क्या हैं, इसमें क्या कुछ कमी है और इसमें और जो है उसमें किस तरीके से सुधार की जरूरत है। मसलन आप सड़क देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने सड़क बनवा दी, क्या सड़क बनने के बाद उसमें और ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, उसमें रखरखाव में किस तरीके से सुधार की ज़रूरत है, वहाँ पर कितने हमें रोज़गार मुहैया कराने की ज़रूरत होगी, उन सड़क बनने से आसपास के इलाकों में किस तरीके से बदलाव हुआ, ये सारी चीज़ें आपके पास एक सैटेलाइट इमेज के ज़रिए जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा उसी तरफ आप देखें कि जीआईएस मैपिंग में भी वही चीज़ होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये जो तकनीक के ज़रिए है, तकनीक के ज़रिए आप ग्राम विशेष की ज़रूरतों को पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे, ये तीसरा बड़ा बदलाव है। मैं दो और बदलाव की बात कर दूं उसके बाद आपसे अगला प्रश्न लेता हूं। दूसरा यह है कि जो हमारी परिसंपत्ति बने, जो असेट क्रिएशन हो, वो एक लंबे समय के लिए हो, ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे एक घर बना दिया और आपने गांव खत्म कर लिया, बल्कि एक सड़क बने, वहां पर बांध बने, वहां पर जो है जो कुछ भी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई उसका और ज्यादा विस्तार हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेबल असेट का स्थाई जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण हो। और पांचवी जो बात है कि बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, हम देखते हैं कि वो अलग अलग टुकड़ों में चलाई जाती हैं, उसका असर क्या होता है कि आपने सड़क बनाने के लिए एक योजना बनाई, ग्राम उद्योग के लिए आपने एक अलग योजना बनाई, तो दोनों के बीच में कोई समन्वय है कि नहीं, कि जहाँ पर ग्राम उद्योग विकसित हो रहा है वहाँ पर सड़क का पूरी तरह से निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स इसको कहते हैं कि यानी कि सभी योजनाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम करें, ये पाँच खास बातें हैं जो वीवीजी रामजी को एक नए स्वरूप देती हैं और जो कि आज से लागू हुआ।
1: यहाँ पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि तकनीक के माध्यम से केंद्रित होकर काम बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर अहम सवाल ये है कि तकनीक के माध्यम से ये नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर होगा या गांवों की जो आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत या जो स्थानीय अधिकारी या स्थानीय जो हमारे लोक निकाय हैं उनके माध्यम से वो काम चयनित होंगे।
0: इसके लिए आप अगर 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था उसके गठन के समय में बड़ी खास बात कही गई थी। उसके गठन में कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं दिल्ली से बनाते हैं और गांव पे जाकर के थोप देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, उसकी जगह पे हमको बॉटम अप अप्रोच करना है, यानी कि निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बताएं कि हमारी जरूरत क्या है। अब यहाँ पर आपके पास तकनीक मददगार है, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपने पता करने की कोशिश की, आपने जियो स्पेशल के जरिए पता करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात लैंड रिकॉर्ड, आप जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है, आपको जमीन की जरूरत है, अब वो जमीन का खसरा और वो सब जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में जिसका काफी महत्व होता है वो हमारे पास किस तरीके से उपलब्ध है। तो आज भी अगर हम कहें कि अगर वो केवल कागजों में है और उसका पूरा रजिस्टर है तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए एक योजना बनाना हो तो उस रिकॉर्ड के जरिए संभव नहीं हो पाएगा।
1: दिल्कुण।
0: तो वहां पर आपके पास एक तकनीक के जरिए जो आपका डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो मदद करेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो निचले स्तर पे जो कुछ भी काम चल रहा है, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका इनपुट्स भी है और उस इनपुट को तकनीक के साथ जोड़ करके आप एक विस्तृत जिसको कहते हैं ना DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और फिर उस गांव के लिए जो है वो गांव के समूह के लिए जो है वो आप कुछ काम करते हैं।
1: यहाँ पर आपने

0: पहले ही जानकारी दी कि 100 दिन से बढ़ के 125 दिन हो गया। इससे जो मजदूर हैं या गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो इस काम के लिए सामान्यतः अपने आप को उपलब्ध कराते हैं, उनकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा?
1: दो तीन चीजें हैं। एक तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम वेज, न्यूनतम जो मजदूरी है जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है, उसके मुताबिक मनरेगा में जो मिनिमम वेज था, न्यूनतम मजदूरी थी, वो 298.80 रुपये थी, अब वो 327.40 रुपये हैं। अब ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं लगभग 25-30 रुपये का, और राज्यवार अगर स्तर पे आप देखें तो जैसे मैं कुछ राज्यों का एक जिक्र करूंगा आपके सामने, तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगभग 380 रुपये का, 379 रुपये है अगर बिल्कुल मैं सटीक आंकड़े लेकर के चलूं। बिहार की बात करूं तो 300 रुपये का है, फिर पंजाब की बात करूं तो वहां 300 रुपये का है, तेलंगाना की बात करूं तो 305 रुपये का है, कर्नाटका की बात करूं तो 382 रुपये का है, तमिलनाडु में 345 रुपये है, आंध्र प्रदेश में 375 है। तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपये का बनता है, और न्यूनतम जो है वो 300 रुपये का बनता है, और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपये के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, 2/3 आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास, इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
0: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए, यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो?
1: यही पे तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है। कि आप कहते हो कि हमें सड़क की जरूरत यहाँ पे है कि नहीं, हमारे लिए यहाँ पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं, अब आपने कहा कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहाँ पर तकनीक के जरिए, जियोस्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है। आपका डुप्लीकेशन जो है, दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पे बनाएंगे। तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है, और जहां पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी जो है वो आपके सामने रख सकते हैं, तो वो काफी मददगार होगा। दूसरा, जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होता है। तो DBT के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा। तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहाँ पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहाँ पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठे और आपने कहा नहीं जी यहाँ पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहाँ पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है। तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ, उसके ऊपर आप नज़र रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई वही प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
0: यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं, पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
1: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, KYC वो नहीं होता था। अब KYC के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी पहचान भी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है नए कार्ड को बनने में या नई व्यवस्था को पूरी तरह से अमल करने में। और देखिए ये कानून तो पिछले वर्ष पारित हुआ था, अब जा करके उसको अमल किया गया है, तो इतना विश्वास किया जा सकता है कि ये जो बीच का समय था इस

0: बीच के समय में वो बुनियादी व्यवस्था बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर वीवीजी राम जी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहाँ पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहाँ पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक जिसको कहते हैं ना ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
1: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
0: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है। और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफ़ी पीछे रह जाते हैं।
1: हम पीछे ना रहें और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ है। मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है दाग।

प्रेम गीत की इस गज़ल के बाद आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने सूरज फिल्म से लिया है। हसरत जयपुरी के बोलों को धुन में सजाया शंकर जयकिशन ने, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है अनजाने। संगीत तैयार किया कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर।

याराना फिल्म के इस गाने के बाद आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत आरजू फिल्म से, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत तैयार किया शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए आरजू फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 8:42 होने को है, वक्त है छोटे से अंतराल का। आपको एक सूचना दे दें, गठिया रोग एवं आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबर्स पर अपने कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन ब समय एक बार फिर सुन लें, दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से। फोन नंबर 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को

0: भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की

0: कल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मुक्त भारत अभियान में तेज़ी आ सके। वज़ीर मौसूफ ने ज़ोर देकर कहा कि इस मुहिम से मुतालिक तमाम इत्तिलात और मालूमात सादा और आसानी से समझ में आने वाली ज़बान में होनी चाहिए ताकि अवाम तक वसी तर रसाई को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय बहरिया के बहरी जहाज़ों INS तरकश और INS इकशक ने सेशल्स के पोर्ट

0: وکٹوریا پر لنگر انداز ہونے کا اپنا دورانیہ مکمل کیا۔ وزارت دفاع نے آج بتایا کہ ان بحری جہازوں کا یہ دورہ بحر ہند خطے میں دوستانہ بحری ملکوں کے ساتھ بحری تعاون کو مستحکم کرنے کے بھارتی بحریہ کے عزم کو دہراتا ہے۔ یہ دورہ ویژن مہاساگر سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اس دوران سیشلز کے قومی دن اور گولڈن جوبلی تقریبات کے تحت مختلف پیشے ورانہ، استقبالیہ اور کمیونٹی کی شرکت پر مبنی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوران آئی این ایس ترکش کے بحری بینڈ اور مارچنگ دستے نے 28 جون کو منعقد سیشلز کے قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا، جو بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی اور دیرینہ بحری ساجیداری کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی اپنے 3 روزہ بھارت دورے پر آج شام نئی دلی پہنچی۔ وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ یہ چوٹی کانفرنس فریقین کو دو طرفہ تعاون کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لینے، انہیں مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم مودی اور جاپان کی وزیر اعظم کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کے تبادلے کی امید ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت اور جاپان بنیادی ڈھانچے، شہری جدیدکاری، توانائی، زراعت، سیاحت اور ہنرمندی پروجیکٹوں سمیت شمال مشرقی بھارت میں کنیکٹیویٹی اور ترقی میں شراکت دار ہیں۔ شمال مشرقی خطہ کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے جاپان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے اور جنوبی ایشیا کو جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑنے میں پل کا کام کرتا ہے۔ شمال مشرقی خطے اور جاپان کے درمیان سال 2025 تک اب تک کئی اعلیٰ سطح کے دورے ہوئے ہیں، جن میں جاپان کے خارجی امور کے وزیر مملکت ایواو ہوری کا اس سال فروری کا بھارت دورہ شامل ہے۔ اس دوران انہوں نے میگھالیہ اور آسام کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کی تھی۔ اسی طرح آسام کے وزیر اعلیٰ نے بھی گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں جاپان کا دورہ کیا اور آسام اور آسیان کے درمیان اگلے 5 سال کے دوران 20,000 نوجوانوں کو تربیت دینے سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی وراثت کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے۔ مبینہ انہدامی کارروائی کے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامعنی کارروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی۔ بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گردوارہ صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے۔ بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقے واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے۔ بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ملکوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے اپنی حراست میں موجود 386 ایسے شہری قیدیوں اور 53 ماہی گیروں کی فہرست انہیں سونپی جو پاکستانی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ پاکستان نے اپنی حراست میں موجود 52 سول قیدیوں اور 198 ماہی گیروں کی فہرست سپرد کی جو بھارتی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ بھارتی ہیں۔ بھارت پاکستان کے زیر حراست شہری قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے لگاتار زور دیتا رہا ہے۔ سری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کا پہلا جتھا جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ میں پہنچ چکا ہے اور کل سے سالانہ یاترا شروع ہونے کی تمام تیاریاں ہو گئی ہیں۔ تمام ضروری تیاریاں جن میں بڑھی ہوئی سیکیورٹی اور یاتریوں کی رہائش کے انتظامات شامل ہیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ 57 روزہ یاترا ننوان، پہلگام اور بالتل کے راستے سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی۔ آکاش وانی نے آج نئی دلی کے آکاش وانی بھون میں واقع رنگ بھون آڈیٹوریم میں اپنی نشریاتی ہاؤس کی فوٹو گیلری سور پریرنا وتھیکا کا افتتاح کیا. اس فوٹو گیلری کا افتتاح پدم وبھوشن بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسیا نے کیا. اس تقریب کے دوران ایک موسیقی ریز کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنڈت روپک کلکرنی نے بانسری کی دھنوں سے من موہ لیا. اس تقریب کے دوران پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی اور آکاشوانی اور دور درشن نیوز کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین موجود تھے. اس موقع پر موجود افراد سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ آکاشوانی نے بھارت کی فراواں موسیقی کی وراثت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے.
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है.
0: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین T20 پانچ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں ہوگا. یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فٹ بال میں فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج رات اٹلانٹا میں انگلینڈ کا مقابلہ جمہوریہ ریپبلک کانگو سے ہوگا. اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے. مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے. سپریم
3: کورٹ نے ڈیجیٹل انڈیا کے 11 ورش اے آئی، سیمی کنڈکٹر اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے میں کرانتیکاری پریورتن پر پریچرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں اے آئی وشیشگیا پرسون شرما اور اے آئی ایوم تکنیکی وشیشگیا اتپل چکرورتی. کارکرم کا سنچالن کر رہے ہیں آکاشوانی سنواداتا نکھل کمار.
4: شوتاؤں نمسکار. چرچا کا وشے کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل انڈیا کے 11 ورش پورے ہونے پر, جس میں ہم بات کریں گے اے آئی، سیمیکون اور ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے بارے میں. آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں دو خاص مہمان, جن میں ایک ہیں پرسون شرما جو اے آئی ایکسپرٹ ہیں. ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا.
5: نمسکار.
4: اور شوتاؤں ہمارے ساتھ جڑے ہیں اے آئی اینڈ ٹیک ایکسپرٹ اتپل چکربورتی جی. اتپل جی, کارکرم میں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے.
6: نمسکار جی.
4: اتپل جی, سب سے پہلے کارکرم کی شروعات میں آپ سے اس بارے میں جاننا چاہیں گے کہ 2015 سے لے کر کے آج تک کی اس پوری یاترا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بھارت کے درشٹی کون سے سب سے بڑی اپلبدھی کیا رہی اور کس طرح یہ جو اپلبدھی حاصل ہوئی ہے, جو بھی ہم نے کاریہ کیے ہیں ان پر آپ کے کیا وچار ہیں؟
6: جو یہ ٹائم فریم جو ہے اس کے اندر ہم لوگ ٹیکنالوجی فرنٹ پہ بہت ایڈوانسمنٹ کیا ہے, چاہے وہ ہمارا ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہو, چاہے ہمارا یو پی آئی جیسا پیمنٹ سسٹم ہو, یا ہم لوگ یہ بھی دیکھے ہیں کورونا کے ٹائم پہ اپنا کوئن جو ہے, یہ جو نیا ابھی پلیٹ فارمس آ رہے ہیں جو کہ سٹیزن سینٹرک پلیٹ فارم ہے, یہ شیتر میں بہت بڑی اپلبدھی ہے اور بہت ایڈوانسمنٹ ہوا ہے, جو کہ خالی دیش کے اندر ہی نہیں یہ ودیشوں میں بھی یہ ایک ماڈل بن کے آیا ہے باقی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے, ایون کہ ڈیولپ کنٹریز کے لیے. کیونکہ ہم لوگ جو انفراسٹرکچر جو تیار کیا ہے وہ انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ ہے اور اتنا ورسٹائل ہے کہ ابھی ہم لوگ کوئی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, چاہے اے آئی ہو, چاہے کوانٹم ہو یا کوئی بھی ڈیٹا ایکو سسٹم ہو, سب کچھ ہم لوگ بنا سکتے اس کے. تو یہ جو گراؤنڈ ورک کیا گیا ہے یہ 12 سال میں مطلب ریمارکیبل مطلب اپلبدھی ہے.
4: پرسون جی, اگر آپ سے میں بات کروں, آپ سے جاننا چاہوں تو ڈیجیٹل انڈیا کی جب شروعات ہوئی 2015 میں, تب شاید کسی نے اتنا نہیں سوچا ہوگا کہ دنیا کا ایک بہت بڑا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہمارے دیش میں تیار ہوگا. تو آپ کے حساب سے اس بدلاؤ کے پیچھے سب سے بڑی سوچ کیا رہی اور کون سے ایسے اہم فیصلے تھے جو اس بدلاؤ کے بھاگیدار بنے؟
5: ڈیجیٹل انڈیا کے یہ 11 ورشوں کو ایسا دیکھتا ہوں کہ لائن میں لگنے والی ارتھ ویوستھا کو آن لائن ارتھ ویوستھا میں پریورتت کر دیا ڈیجیٹل انڈیا نے پچھلے 11 ورشوں میں. اور اس کے 3 مہتوپورن جو اپلبدھیاں یا مائل اسٹون میں کہوں گا, پہلا ڈیجیٹل پہچان جو ہمارا آدھار ہے, دوسرا ہمارا ڈیجیٹل بھگتان جو یو پی آئی ہے, تیسرا جو سرکار کی سیوائیں ہیں, چاہے وہ آپ پاسپورٹ دیکھ لیجیے, ٹیکس دیکھ لیجیے, شکشا کا کھیتر دیکھ لیجیے, میڈیکل سروسز, اس کا ڈیجیٹائز डिजिटलाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
4: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
7: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
4: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
5: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
4: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
6: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
4: तो सुन जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
5: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
4: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, CSC की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
5: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब AI इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें AI से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ दो ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था US ओरिएंटेड, जिसको हम GAFAM बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन।
4: जी।
8: हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
4: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
8: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है
4: जी।
8: पूरे विश्व में वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है।
4: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
6: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस AI फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी API कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई-कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास UPI है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही AI का अभी आप सुन जी ने बात किया कि AI कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में GPUs दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
4: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
6: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
4: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
8: काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफ़ी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विस में, जिसमें आप आजकल डीप टेक जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
4: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है, तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
6: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में, और इसीलिए क्या हो रहा है जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है जितना कुछ है डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है, तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जो बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, से और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है, और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
4: अब प्रसून जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
9: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है, टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
4: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
8: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए

0: मोबाइल कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवरेनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम।
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, AI में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन AI का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है चाहे डिफेंस हो चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन AI का आ गया है। और जब भी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये AI के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब AI के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसीज चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी AI के लिए भी हम लोग को GPU चाहिए। अभी GPU अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का GPU चाहिए, हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो AI तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो GPU पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंड ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने

0: देख किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
1: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजेक्शन या SMS या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज़ करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज़ करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे हमने भी एक IITs के थ्रू MSMEs को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेज हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
0: आपने MSME का जिक्र किया, तो जब MSME की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहलों या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहलों, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने 1 District 1 Product बनाया, वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स के जो MSMEs हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल FTAs साइन कर रहे हैं, अब ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीज़ें चाहिए जैसे वहाँ की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सकें और उनके ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक सकें। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
0: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था, इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
1: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
0: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और AgriStack जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हो स्किल. सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स

0: बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है
1: जी
0: जो कि हम लोग ये करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है। और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। ना कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है ससीम कुमार बाड़े के लिखे मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक केकड़ा।

0: ये बाबा की आज बहुत तूफान है।
1: तारा तारी करो।
0: अरे कोच बाबा की तुम्हें
1: ए माजी माजी देखो देखो मतलब कैसी फुफका रही है ना, ये आकाश एकदम बादलन से अट गया है।
0: उड़ी बाबा, ये मोनू बीबी, ये उन्हें नदी में घर नहीं लौट पाएंगे हम। हाँ, हमको बड़ा डर लग रहा है। बापू कहता था उफना नदी में काट की नाव तो नाला में बहती कागज की नाव से हलुक हो जाती है।
1: अरे सुनो सुने, अपन नाव को ना माया दीप के खाड़ी में बढ़ाई लो। हाँ, जोखिम कम होगा वहाँ पर।
0: ठीक ठीक
1: ठीक है ना। अरे पतवार तनिक जल्दी खेवो, तारा तनिक करो,
0: करो
1: तारा तनिक करो ना।
0: ये मुनिसा मुनिसा, वो देखो वो देखो वो देखो वहाँ वहाँ देखो वहाँ। हे ताल का कितना घना झाड़ी है, तेज हवा से भी बचाव होगा। तो यहाँ डाल देते हैं लंगर, क्या कहती हो?
1: एकदम एकदम ठीक ठीक। सुनो अभी नैया के लंगर ला, जबरे जो है ना जरा तनी कस के बांध दो।
0: ठीक ठीक।
1: अल राम कर, राम कर।
0: हाँ तो अब थोड़ा राहत का सांस।
1: मिया, ये हफीजूर काहे नहीं आया?
0: अरे उसके बड़ा खाला की बेटी का शादी में गया है।
1: शादी में?
0: हाँ, केनिंग। अरे खूब दावत उड़ाएगा हुआ था।
1: खूब खाएगा ना।
0: तन बादल ता हो रहा है।
1: बादल देखो ना छट गया है, देखो वो गरान पेड़ के ओट में से झांक रहा है, वो पंचमी का चांद कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, चाहे जो भी कहो मांझी, सुंदर बन के ये मतवारा छटा के निहार के तो एकदम जी जुड़ा जाता है। सुनो, ये खाना परोसते हैं, अब खाई लो।
0: अरे का खाएं?
1: काहे, दोपहरिया के पानी भात और केकड़ा भी तो है।
0: अच्छा तनी लालटेन में बढ़ाए दे।
1: अच्छा बढ़ाते हैं।
0: और तुम भी खाई लो बीबी।

0: हमरा तो एकदम बदन टूट रहा है, एकदम पूरा दिन के थकान के बाद अब तो आँखियाँ एकदम सटल जा रहा है।
1: हाँ तो जा, जा तो सो जा। मारे

0: ना है।
1: डर के मारे हमर जान जा रहल है और तू अपने रस के फिराक में है। छोड़ छोड़ ना हमरा।
0: ऐसा छोड़ दे तो कब प्यारी। तनिक याद तू कर दोपहरिया में केकड़ा कैसन गपुचिया रहल हमने कसा।
1: देखा ना तू केकड़न के प्यार देखा ना। ऐसन प्यार इंसान के बस में ना है। हाँ
0: कमाल है मुन्ने सा कमाल। अरे तू तो गड्ढन को देखते ही बता देते उमा केगो केकड़ा है।
1: हाँ,
0: है? और हम बेवकूफ पाक में दौड़ी गरा के सोचते रहे तोरा पता कैसे लगत है।
1: हमरा तो हंसत हंसत सांस फूले लागल। केकड़ा पकड़त इतना साल बीत गई पर अभी भी। तब दिखाई रहे ना तोहरा कि ई पाक मा मादा केकड़न के हलोग बुझल ना हलोग और नर केकड़न के गहीर छाती के निशान समझ।
0: सच बीबी। अरे तोहार नजर कभी जवाब नहीं गड्ढन के देखते बताए रहे दोनों केकड़ा खूब बड़का निकली है। अरे कैसे अंकुशी के ठीक निशाने पर डाल तो पाक से दोनों केकड़ा निकाल ले। वाह। अरे खुशी के मारे हम तो उछलिए जात। अरे बाकी गोड़ तेरे ससुर पाकवा गड़ल रहे ला।
1: और तू चीख पड़ला बीबी तू कमाल कर दी ले कमाल कर दी ले। मिया बाबुअन से एक केकड़न के कम 20-25 रुपया तो मिलवे करी है ना।
0: ए सुनो ना
1: की
0: ए
1: बोलो
0: तुमको याद है वो मादा अपने खसम को कैसे कड़कड़ा के पकड़े रहन अपने डंकवा आवत हमरे। अरे
1: आवत तो हम ही को याद नहीं पर तुमके सबुर नाम की कोई चीज नहीं है।
0: सबुर का होत है वो बाबा के तो बड़ा झिलो है बाबा रे इतना बड़ा केकड़ा का जोड़ा। और तू क्या बोली छोड़ दो। अरे काहे
1: क्या नो बोलबो ना है वो बखत उनके प्यार का रहा। ऐसन माँ अगर तुम उनको पकड़ते तो का वन बीबी गुस्सा ना करती। और जरा ये भी तो सोचो कितना सारा वो छोटा छोटा छोटा छोटा केकड़ा आवेगा। अब बता वो प्यार न करे तो हमरा ये पेट कैसे चलेगा बोलो।
0: ए हमार प्यारी बीवी ये तो सच है तू ना होती ना तो केकड़ा पकड़ के गुजारा करना मुश्किल था। ए हाँ ना
1: छोड़ो ना
0: थोड़ा और पास आना।
1: की कुछ तुम्हीं छेड़ दो मामा
0: ये सुन हाँ ना
1: ना ना आमा के छेड़ दो छोड़ो छेड़ दो
0: सुनो तन
1: अल्लाह हमको औलाद ना दिया अगर होता तो कैसा धूम मचा रहता आंगन में।
0: कहा मने साबे भी
1: अपना तो नसीबे फूटा हुआ है।
0: अब
1: ना तो उपकीर वाला ताबीज काम ना करता का।
0: अरे कैसा करता है वो तुमका दिया रहा कमर में पहनने बदे और तुम का किए अंगूठी बना के केकड़ा को पहना दी। बाप रे केकड़ा का डंक ऐसन कसमसा रहा था। अरे हम तो डरा रहे थे कि अब काटा कि तब काटा है। अरे तू ना ही डराई
1: डराने जैसन कहा था बास को चिमटवा से पकड़वा ने रखे थे का वो तक आ उकरा बाप बिना काट सकत।
0: अच्छा
1: बाकी मियां वो तो ठीक ना किया।
0: काहे
1: वो मादा केकड़ा का मातला के मुहनवा पर जाकर छोड़ दिया।
0: तब
1: और उका खसम का छोड़ा कितना दूर ले जाके खड़ियन के पानी में उके परिवार तोड़ दिया। तुम अच्छा ना किया एकदम अच्छा ना किया मियां तुम
0: तो का परिवार तोड़ दिए।
1: हाँ
0: तो देख हमारा मजा ए आवे ना तन तन छतिया के नियर
1: छोड़।
0: अरे हाँ ना
1: अरे ना मियां ना
0: छोड़
1: ना हमरा छोड़ नहीं माँ ये काम गुनाह हुए बन पी भी हमका माफ ना करी छोड़ हमका छोड़।

0: छोड़ दे, ऐसे कैसे छोड़ दे। अच्छा बता, तो केकड़न के माफिक छतियन से सटा के रख बो, काहे की प्यार के बखत हल आता ना।
1: सुनो, अब छेड़ दो, छेड़ दो।

0: राजा, वन बीवी की पूजा लाए हो?
1: हाँ भैया, हर बैशाख के बैशाख वन बीवी के बथान पर सिन्नी न चढ़ाऊं तो मनवा नहीं मानत है।
2: हाँ, ठीक कहते हो चाचा। तुम मुसलमान लोग चढ़ाते हो सिन्नी और हम हिंदू चढ़ाते हैं कंदमूल के प्रसाद। देवी के स्थान पर दोनों भेदभाव नहीं।
1: हाँ भैया, वन बीवी की महिमा तो परंपार है। याद हो वो नाड़ू ढाली कैसे वो दक्षिण राय उका खींच के ले गरा, साक्षात देवी प्रकट हुई और उका प्राण बचा।
2: और नहीं तो का सब लोग ऐसे ही बन बीबी को जागृत देवी कहते हैं। याद है चाचा कैसे सब आपन आपन जान लेके पराए रहे, कहता होश रहा कि कौन कहवा गिरा पड़ा कि मरमरा गया। उसी वक्त चमत्कार हुआ, समूचा बन दूधिया रोशनी से जगमगाने लगा, इतना कि आंख झुलसाव देवे। ऐसन माँ बाघ कौन सा बिल में दुख का काहू को पता नहीं। जब रोशनी छटी तो का देखते हैं कि बेचारे नाड़ू के बदन से खून पिचकारी मार के फूट रहा था। अब बताओ चाचा, देवी ना होती तो का उनका प्राण बचता?
3: नाड़ू को साक्षात देवी ने बचाया। नहीं तो हम जैसे मामूली मछुआरन के रक्षा और कौन करे।

0: प्रणाम हुजूर, नमस्कार हुजूर।
1: अरे हाँ छोरू, आज केकड़ो पकड़ने नहीं जाएगा का?
0: हाँ चाचा, जाना जो है, एगो डेंगी तो दिखाओ।
2: डेंगी? आज दादान ना चाहिए तोरा?
0: हाँ ना, माने दादान ना वो
2: बुझाई बुझाई, जब ये केकड़ा परदेश गईल बंद हो जाई तो ये बुझाई तोरा। हाँ का जतिन, तू का कहता है?
3: अरे बाबा, हम का बोलेगा? अब हम ठहरा एरू गैरू नत्थू खैरू, हमार बोली के का मोल।
0: चाचा, वो डेंगी का भाड़ा कितना कितना लेंगे अभी?
2: हर दिन का 200 रुपया। हाँ
0: का बाबा, चाचा का कहते हैं, अब पहले तो 150 रहा था, अब एक बार में 200 रुपया। तो
2: देख, डिंगी चाहिए तो ले, ना चाहिए तो काहे ले। वो है
0: मालिक, थोड़ा पैसा कम हो जाए तो।
2: एक पैसा कम नहीं लगा, दे दे डिंगी इसको।
3: अच्छा ठीक है, ठीक है, आइए आइए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मालिक मालिक।
4: अरे ओ बड़को माझी, गोलाई पे का गमशुम आयल हुए? कब नो ठीक है का हो?
5: अल्लाह अल्लाह, रहम कर, रहम कर अल्लाह। वो मुआ छगन अली के मुंह देखे निकसे ना, तब से ही मनवा एकदम रुआसल रहे।
4: ठीक है तो बाउदी,
5: ताना माझी के कनवा में कौन समंदर फूंकत रहे। हमार तो उका आंख देखे ही ना ये परान सटक जाला।
4: अरे ऊ सब छोड़ बउदी, देख मर्यादी पंजोरा अंदार मा कितना मन सायन लागत हुए। सुंदर बौन पहरे पहर रूप बदलेल, जैसे कवनो तोर गांव, कवनो तोर गांव के छोरी।
6: बचाओ बचाओ, पालन माजी, अरे पालन माजी, का हुआ ना बाबा?
0: मत रहा, दक्षिण राय को छोड़ी हम।

0: এসে গেছো? আসো আসো, ওখানে না, এখানে বসো, খানা পরোসতে হ্যায়।
1: নাহিন।
0: আরে মাঝি, গুসা মে হোগা।
1: তু না বুঝবে? তু না বুঝবে? ও হারামি ফিজিল হয় চোরে, ইতনা লগা তোরা।
0: कह रहे हो माँ जी, अल्लाह कसम, ये बात दिमाग में से हटा दो, हटा दो।
1: हम नहीं, सगरे गांव में शोर है, भीतरे भीतर रस लेबे और हमारा भनक बिना पड़े, यही ना बुझले तो। अरे बाकी छगन हुजूर से तो पूरा करतूत सुन के आवत है।
0: तोरा तोरा छगन अली के बात पे यकीन है?
1: छगन हुजूर के बात तो यकीन ना करी, और तोरा बात पे यकीन करी हम? हाँ, इले इले इबात पर

0: ये का हाल किए हो अपना और ये घर का? ऐसी बीवी का घर से निकालने का यही नतीजा होता है। अब भुगतो।
1: भुगत रहे हम। अब और जन कोसम का दिमाग में ताला लग गया हमार। जो जो छगन नली की बात सुन जन बीवी को तलाक दे दे। अभी भैया तो मुन बीवी अभी अभी कहाँ है?
0: आपन बड़ की चाची के नहीं हर माँ।
1: देखो तो मोनू बीवी के अलावा हमार के है यहाँ? ओकरा बगैर हम जिंदा ना रहे, जिंदा ना रहे। भाई हाथ तू ही कुछ कर लो।
0: अरे ओहे ला तो आए हैं हम। छोगा नाली है को जीता जागता शैतान है शैतान। लेकिन अब ऊ है।

0: शैतान के रोजा मंदिर ना मिले तो कुछ ना होगा, मतवाले को पकड़ना ही होगा।
1: देखा, हम छगन हजूर के पैर पकड़ लूंगा। हम कहूंगा कि मोनू बीबी को मेरे घर भेजने के लिए राजी हो जाओ, पर तुम चलो हमारे साथ।
0: तो चलो।
2: आदाब हुजूर।

0: वापस बुलाना चाहते हैं। आप राजी हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। आपकी बात सब मानते हैं।
1: तू चाहता है मैं खुदा के बनाए कायदे कानून के खिलाफ जाऊं? क्या
2: हुजूर, मेरा यकीन मानिए हुजूर, हम मन से तलाक नहीं दिए हैं हुजूर।
0: हाँ
2: हुजूर, तो गुस्सा में आके बिना कुछ सोचे समझे तलाक दे दिए हुजूर। अब आप ही बताइए हुजूर, ऐसे तलाक भला कहीं टिक सकता है क्या हुजूर? हम तो
1: ये जोरू को अपने मुंह से तलाक दिया है तूने।
0: हुजूर, आपने सिर्फ बाहर के बात को ही सुना है।
1: तुझे अगर इतना ही प्यार है तो ही निकाह कर लेना मुन्नेसा से।
0: शकुन
1: जनाश करना फिर छोड़ देना। हाँ सुन, उसके बाद छोरू चाहे तो निकाह करे तलाकशुदा बीबी से, इसमें कोई ऐतराज नहीं।
2: रहम कीजिए हुजूर, हम पर रहम कीजिए। तक हम आपके पांव पड़ते हैं हुजूर, बंदे को अब और जलील ना करें हुजूर। हमारी दुनिया तो पहले ही बर्बाद हो गई हुजूर। हुजूर माफ कर दीजिए हुजूर।
1: आया ना हूँ पहाड़ के नीचे, कितनी बार बोला मुसलमान हो के केकड़ा ना पकड़, और तो और केकड़ा खाता भी था कम बढ़ा। घर की औरत लेकर पराई मर्द के साथ दिन रात केकड़ा पकड़ता फिरता था। क्या सोचता था खुदा तेरे इस जलील हरकत को बर्दाश्त कर लेगा? अब जाए यहां से।

0: এই মাঝি মাঝি, ই সর নিচা করকে কাহে বেঠে হো?
1: কন হো
0: চারা আর দৌড়ি লেকে চুপচাপ বেঠে হো? আবু কেকড়া পকড়নে কাহে নহীঁ যাতে?
1: अब क्या होगा केकड़ा पकड़ के?
0: हा? ना माजी, ना। सुनो, एक काम करो, एक अच्छी सी लड़की देखकर निकाह कर लो।
1: क्या?
0: तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी।
1: रहने दे, ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को ठेस ना पहुंचा।
0: माजी, माजी वो लड़का को देखने का जी ना करता तुम्हारा। छोटा माजी तो कहता है कि ये तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा और हमारा, वो मायादीप का लड़का, याद है माजी? उरा नाव पर तुमने हमरा कितना प्यार किया था। हम तो कह रहे थे कि बंदी भी नाराज होंगी, पर उन्होंने तो हमरा औलाद दे दिया। औलाद हमरा बेटा, पर हमरा परिवार तोड़ दिया।
1: मने साहब,
0: हमरा परिवार, अब हमरा दिल में अंधेरा के सिवा कुछ भी ना बचा, कुछ भी ना बचा।
1: मने साहब, सब नसीब है, समझे? अरे सब नसीब है, और मेरी गलती है कि
0: ना ना माजी, इसमें ना तुम्हारा गलती था ना हमरा। हम तो सिर्फ कठपुतली थे जिसका डोर छगन अली के हाथ में था। छगन अली जैसन लोग गरीब का घर उजाड़ कर जश्न मनाते हैं ना, जश्न मनाते हैं।
1: इतने साल गुजर गए पानी में, जंगल में काम करते हुए, पर फिर भी सांप के रंग को ना पहचान पाए हम।
0: अच्छा माजी, केकड़ा तो पकड़ नहीं पाए, लाओ हम पकड़ लाते हैं। वो बांस का चिमटा कहाँ है? लाओ जरा वो दोहरी बढ़ाओ तो तनी।
1: ना तू रहने दे,
0: कहे हमरा पकड़ा हुआ केकड़ा अच्छा ना लगे। हाय, इतना साल में भी गुस्सा ना उतरा तुम्हारा।
1: निशा तुम
0: अच्छा, चलो ठीक है, हम दोनों ना उस साथ मिल कर केकड़ा पकड़ते हैं। चलो
1: अच्छा, चलो ठीक है, चल। सुंदर वन के इस द्वीप में एक साथ कितने केकड़े पकड़े हैं हमने।
0: कितना केकड़ा, वो गरान पेड़ के नीचे वो गड्ढा को देखो तो, कितना कितना बड़ा है। बर्ची बर्ची डाल कर देखते हैं, बर्ची। अरे बाप रे, कितना बड़ा केकड़ा, कितना बड़ा,
1: या अल्लाह।
0: गड्ढा में एक केकड़ा औरो है, औरो है। हाँ
1: या अल्लाह,
0: कहाँ खो गए? माजी माजी, एक केकड़ा औरो पकड़ा हमने। आ देखो, इसके डंक पे ना वो तांबे के तार का अंगूठी है। हाँ ये देखो देखो।
1: अरे हाँ हाँ, तो जो पहले पकड़े थे उसके डंक पे भी तांबे के तार की अंगूठी थी। हाँ,
0: तांबे के तार की अंगूठी।
1: हाँ, याद है ना तुम्हें, वो फकीर का दिया हुआ ताबीज।
0: हाँ,
1: जिनके तारों से तूने इन दोनों को अंगूठियां बनाकर पहनाई थी।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, अरे अपने आंख पर यकीन ना हो रहा है माँ जी। हाँ। एकदम भरोसा ना हो रहा है। हाँ। ये तो वही घरान का पेड़ है ना।
1: हाँ, ये वही पेड़ है वही।
0: वही गड्ढा।
1: हाँ।
0: वही केकड़ा का घर।
1: हाँ।
0: ये से पकड़कर इन दोनों को मातला के पानी में अलग अलग जगह पर छोड़े थे ना।
1: हाँ, बिल्कुल ठीक।
0: खेलते खेलते तुम कितना दूर ले जाकर छोड़े थे वो मादा केकड़े को। पर देखो देखो ना, ढूंढते ढूंढते फिर इन्होंने फिर से अपना दुनिया बसा लिया। केकड़ा सबके परिवार तो ना तोड़ पाए माँ जी, पर अपना परिवार तोड़ लिया। अपना परिवार तोड़ लिया।
1: मौलू भी, ए मौलू भी, लौटाओ ना हमरे पास। हाँ? लौटाओ हमरे पास। चलो
0: हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ दो माँ जी। अब हम हाफिजूर के बीबी हैं। हाथ छोड़ो, छोड़ दो। अरे तुमने हमारा तलाक काहे दिया था, काहे दिया था तलाक, काहे दिया था, काहे दिया था।
2: केकड़ा नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप ससीम कुमार बाड़े के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थी विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, प्रवीण शर्मा।

0: किशोर सहिजानी, सुनील कुमार लोहिया, अशोक मलकानी, दानिश इकबाल, प्रफुल्ल शर्मा, संजीव अग्निहोत्री, सलीम जैदी, श्रीराम शर्मा और कविता वर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए अमित मलिक का वायलिन पर बजाया राग जोग। तबले पर आपके साथ संगत की है MD सामी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे अमित मलिक का वायलिन पर बजाया राग जोग, तबले पर संगत की थी एमडी सामी ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने को है। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से ही। 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवाओं में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।